नंदिनी शरण के गाए इस भक्ति गीत के बाद कार्यक्रम में अब सुनते हैं मधु मुद्गल के गाए भक्ति गीत को।

0: नरेंद्र चंचल और साथियों के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही प्रभाती वंदना कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय प्रातः के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें पुदीने की खेती के संदर्भ में। जी हाँ, पुदीने का इस्तेमाल अक्सर हम करते हैं। पुदीने से सब्जियों में, सलाद में स्वाद और महक दोनों का इजाफा होता है। साधारणतः पुदीने की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें जैपनीज मिंट, पेपरमिंट, स्पेयरमिंट और बेरगामिंट आदि प्रमुख हैं। पुदीने की पत्तियों के जूस, चटनी, शराब एवं शरबत की अच्छी महक के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। पुदीने की पत्तियों में पेपरमिंट नामक तेल पाया जाता है, जिसका मुख्य अंश मेंथॉल होता है। भारत में मेंथा नामक पौधे से मेंथॉल निकालते हैं, जिसे विभिन्न प्रकार की औषधियों को बनाने के प्रयोग में लाया जाता है। वैसे पुदीने में बहुत चिकित्सीय गुण भी है। पुदीने का इस्तेमाल पाचन को ठीक करने तथा पेट संबंधी विभिन्न तकलीफों को दूर करने के लिए घरेलू औषधि के रूप में किया जाता है। हमारे देश में करीब 10,000 हेक्टेयर जमीन पर पुदीने की खेती की जाती है। जहां तक हमारे इन द्वीपों का सवाल है, हमारे इन द्वीपों में भी पुदीना आसानी से उगाया जा सकता है। पुदीने की वृद्धि के लिए जलवायु का जहां तक प्रश्न उठता है, तो इसकी वृद्धि के लिए हल्की बारिश एवं धूप दोनों की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे इन द्वीपों में उपलब्ध है। लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में पुदीने की खेती की जा सकती है, किंतु अच्छे उत्पादन के लिए और अच्छी बढ़ोतरी के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। जमीन का चयन करते समय हमें इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान देना है कि जमीन में जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। पानी रुकने वाले निचली जमीन में पुदीने की अच्छी खेती नहीं हो सकती। किसान भाइयों, अन्य फसलों की ही तरह पुदीने में भी कुछ किस्में हैं और अच्छी किस्मों का प्रयोग ही अच्छे उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। पुदीने की किस्मों में मुख्य रूप से हाइब्रिड 77, RRL 11813 आदि प्रमुख हैं। हमारे इन द्वीपों के लिए

0: उपयुक्त पुदीने की किस्मों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप कृषि विभाग या केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के एटिक सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। पुदीने का प्रजनन कटिंग से होता है। एक हेक्टेयर पुदीने की रोपाई के लिए 500 से 600 किलोग्राम पत्तियों की आवश्यकता होती है। 10 से 15 सेंटीमीटर लंबाई वाले कटिंग्स या पत्तियां 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर रखना ठीक होता है। खेत में गोबर की सड़ी खाद रोपाई के पहले प्रयोग में लाना चाहिए। साथ ही रोपण के समय 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 70 किलोग्राम फास्फोरस तथा 35 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग में लाते हैं। इसके अलावे 75 किलोग्राम नाइट्रोजन को 3 भागों में बांटकर प्रयोग में लाना चाहिए। पहला भाग जब पौधा 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा हो जाए उस समय तथा बाकी 2 भाग को पहली एवं दूसरी कटाई के बाद प्रयोग करें। वाष्पीकरण द्वारा पुदीने से मेंथा तेल निकाला जाता है। औसतन वर्ष भर में 25 से 30 किलोग्राम तेल एक हेक्टेयर से प्राप्त होता है। सूखे के दिनों में प्रायः दीमक का प्रभाव पुदीने को हानि पहुंचाता है। इसके प्रकोप से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधा सूख जाता है। किसान भाइयों, इन बातों को ध्यान में रखकर आप हमारे इन द्वीपों में पुदीने की खेती कर सकते हैं। अगर आप बड़े पैमाने पर पुदीने की खेती ना भी करना चाहें तो गृह वाटिका में तो इसको आप लगा ही सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एग्री टिप्स।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को है। अब कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपने निर्णयों में राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि

0: भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूँ चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और सेकेंड लेडी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी व्यक्त की। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल अबिजान में कोटे डी आइवर के राष्ट्रपति अलासानी ओटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोटे डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह पुदुचेरी के गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में श्री शाह मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह दो दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी किया है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उधर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से जुड़े मार्गों की मरम्मत और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए इस यात्रा को आज से बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दिया गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। यह मुकाबला दक्षिण कोरिया के आसन में भारतीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा। अश्मिता ने कल सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं क्यू हान ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की जी किम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. Mr. Modi received a phone call from Vice President Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defence, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both the leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Mr. Modi congratulated Mr. Vance and Second Lady Usha on the birth of their son and conveyed best wishes to the entire family. Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh called on President of Cote d'Ivoire Alassane Ouattara in Abidjan yesterday. Mr. Singh discussed the growing India-Cote d'Ivoire partnership and reaffirmed India's shared commitment to advancing Prime Minister Modi's vision of stronger and deeper engagement with Africa. In a social media post, Mr. Singh said that he is looking forward to further strengthening their long-standing friendship and expanding bilateral cooperation across diverse areas. The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through the 17th of this month.

0: दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप के लिए आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा। ये जलयान आज ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप के लिए आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से जाएगा तथा इसकी वापसी होगी आज शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप के लिए आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी हडपे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल प्रातः 6 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप के लिए कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से। एमवी रंगत स्वराज द्वीप के लिए कल प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से। एमवी बम्बुका शहीद द्वीप के लिए कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। ये जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप के लिए कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप के लिए कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा इसकी वापसी होगी कल शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप के लिए कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा। ये जलयान परसों मंगलवार 11 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। श्रोताओं, अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं नमस्कार। जिंदगी के सफर में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ चलते हैं, कभी दोस्त बनकर, कभी साथी बनकर और कभी एक ऐसे अपने बनकर जिसके सामने दिल की हर बातें कहने को जी चाहता है। ऐसे ही किसी खास साथी को हम कहते हैं हमदम। हमदम यानी वो जो हमारी खामोशी को समझे, हमारी खुशी में मुस्कुराए और मुश्किल वक्त में हमारा हाथ थामे।

कभी कभी अपने हमदम से रूठना भी प्यार का ही एक अंदाज होता है, और फिर दिल यही कहता है, अब आप मान भी जाओ।

किसी खास इंसान की मौजूदगी जब दिल को सुकून देने लगी तो उससे दूर रहना मुश्किल हो जाता है। दिल बस यही चाहता है कि वह हमदम हमारे और करीब आए और कुछ पल हमारे साथ बिताएं।

0: सफर चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर साथ चलने वाला कोई हमदम हो तो हर रास्ता खूबसूरत लगने लगता है। उम्मीद है आज के इन मधुर नगमों ने आपके दिल में भी किसी खास हमदम की खूबसूरत याद जगा दी होगी। इसी के साथ ही आज के इंद्रधनुष कार्यक्रम से चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं, अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रही थी देवकी। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की 325वीं कड़ी।

आधी रात बीत चुकी है। शक्तिबाण लगने से लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। संजीवनी लेकर हनुमान अभी तक नहीं आए। लक्ष्मण को हृदय से लगाकर श्री राम विलाप कर रहे हैं। हे भाई, तुम तो कभी भी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। मेरे लिए तुमने माता पिता तक को छोड़ दिया। वन वन भटकते हुए शीत, घाम, वर्षा, आंधी सभी कष्ट सहे। अब तुम्हारे उस प्रेम को क्या हो गया? तुम उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि एक दिन मुझे मेरे प्रिय भाई का वियोग सहना पड़ेगा, तो मैं पिता के वचन की मर्यादा को भी भुला देता। पुत्र, स्त्री, धन, घर परिवार, इस जगत में सब कुछ मिल जाते हैं। नहीं मिलता तो वो है सहोदर भाई। स्त्री के लिए ऐसे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अयोध्या वापस जाऊंगा? मुझे परम हितकारी जानकर माता ने प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र को मेरे हाथों में सौंपा था। अब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? श्री राम के कमल सरीखे नैनों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। पार्वती को ये कथा सुनाते हुए शिवजी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ तो अद्वितीय और वियोग रहित हैं, किंतु अपने प्रिय भाई के लिए विलाप करते हुए मनुष्यों की दशा दिखा रहे हैं। ये भी उनकी एक लीला है। तभी वहां संजीवनी लेकर हनुमान आ पहुंचते हैं।

अभी आप रामचरितमानस कांड की 325वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे सुरेश वाडेकर और रविंद्र साठे तथा संगीत संयोजन किया सतीश भाटिया ने। श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज सुबह 9:55 से माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन द्वारा हर घर तिरंगा 2026 राज्य समारोह के उद्घाटन का डॉक्टर बीआर अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान डॉलीगंज से सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसे प्राइमरी चैनल के अलावा FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना जा सकता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:40 हुए हैं। वतन के गीत कार्यक्रम के तहत आइए सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

वतन के गीत कार्यक्रम के तहत अभी आप कुछ देशभक्ति गीतों का आनंद ले रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधित चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण समुद्र में वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से रहेगी, जो कि बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग तक हो सकती है। अतः मछुआरों को 10 अगस्त तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। जन सेवाओं को मौसम संबंधित चेतावनी में बताया जाता है कि आज और कल अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो भागों पर गरज के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी एवं भारी वर्षा होगी। ये थी मौसम की जानकारी और अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद यानी सवेरे 7 सुनिए जन सूचनाएं। 7:15 पर प्राइमरी चैनल पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे विविध भारती से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर आनंद लीजिए गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर फनकार होंगे बाबुल और रूप कुमार राठौर। सवेरे 9 बाल जगत कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस तथा हर घर तिरंगा इन विषयों पर चर्चा। साथ ही आप सुन पाएंगे अक्षिता कुमारी की वार्ता, विषय रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ। सवेरे 9:30 पर आप सुन पाएंगे फिल्मी देशभक्ति गीत का कार्यक्रम। सवेरे 9:55 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे माननीय उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन द्वारा हर घर तिरंगा 2026 राज्य समारोह के उद्घाटन का डॉ. BR अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान डॉलीगंज से सीधा प्रसारण। दिन के 11 आप सुनेंगे कार्यक्रम जनता जंक्शन। सलमा आगा और चित्रा सिंह की गाई गजलों का लुत्फ लीजिए 11:30 पर। पुराने फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकेंगे दोपहर 12 तेलुगु कार्यक्रम में। 12:30 पर

मलयालम में आप सुनेंगे पुराने फिल्मी गीत कार्यक्रम। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में मेहंदी हसन और कमलिनी मल्होत्रा को आप सुन पाएंगे। घर संसार कार्यक्रम सुनिए 1:30 पर, जिसमें आप सुनेंगे श्रीमती V.S. हेमा की वार्ता। विषय रहेगा महिला खुशहाल परिवार की मजबूत नींव। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारी स्थानीय सभा जारी रहेगी गीत लहरी कार्यक्रम के साथ। दोपहर 3 आप सुनेंगे कार्यक्रम एल्बम टाइम। तत्पश्चात 3:30 पर सुनिए कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें आप सुनेंगे भक्ति गीत। 4:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 7वीं कड़ी। कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 4:40 पर। 4:45 पर सुनिए कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम में शाम 5 आप सुनेंगे पुराने गीत। बांग्ला कार्यक्रम का लुत्फ लीजिए 5:30 पर। संध्या 6 सुनिए संगीत संगीनी कार्यक्रम। तत्पश्चात 6:30 पर धरती के गीत कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे संबलपुरी लोकगीत। देशगान कार्यक्रम सुनिए 6:45 पर। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम अंग्रेजी में, और रात 10 रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा में सात्विका मोहन का कर्नाटक शैली में गायन हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जबकि रात्रि 10 FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे विद भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:55 होने को है। अब कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: यत्तौ प्रमुखेषु क्षेत्रेषु भारत अमेरिका समग्र वैश्विक सामरिक सहभागिताम् इतोपि सुदृढं कर्तुम् उपायेषु चर्चितवन्तौ। उभौ उच्चस्तरीय कार्येषु निरन्तरगतिं दृष्टवन्तौ, अपि च व्यापारस्य रक्षायाः महत्त्वपूर्ण उदयोन्मुखप्रौद्योगिकीनाम्, ऊर्जासुरक्षायाः महत्त्वपूर्ण खनिजानां च क्षेत्रेषु सहकारम् इतोपि सुदृढं कर्तुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ। उभौ नेतारौ परस्पर हितस्य क्षेत्रीयस्य वैश्विकस्य च विकास विषये अपि विचाराणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। हरघर तिरंगा इत्यभियानम् अद्य आरभ्य अस्मिन् मासे 17 दिनांकपर्यन्तं च प्रचलिष्यति। राष्ट्रध्वजारोहणार्थं नागरिकान् प्रोत्साहयितुं देशभक्तिं, राष्ट्र ऐक्यं, भारतस्य सांस्कृतिकपरम्परां च आचरितुं कार्यक्रमेषु भागग्रहीतुं च अस्य उपक्रमस्य उद्देश्यः अस्ति। 2020-तमे वर्षे आजादी का अमृत महोत्सवस्य अंशरूपेण आरब्धम् एतत् अभियानं ततः परं देशस्य बृहत्तमेषु जनसहभागित्व आन्दोलनेषु अन्यतमम् अभवत्। वर्षानुवर्षेषु एतत् यथार्थ जनान्दोलनत्वेन परिवर्तितम्, यत् भारतस्य एकतायाः, सम्मानस्य, सामूहिक राष्ट्रिय अस्मितायाः च प्रतीकरूपेण त्रिवर्णध्वजम् आचरितुं प्रदेशेषु, समुदायेषु च नागरिकान् प्रेरयति। अस्य वर्षस्य अभियानस्य विशिष्टं महत्त्वं वर्तते यत् एतत् भारतस्य राष्ट्रियगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य 125वें वार्षिकोत्सवस्य संयोगेन भवति, यत् राष्ट्रध्वजं राष्ट्रगीतं च देशभक्तिविशेषस्य उत्सवे सङ्गृह्यति। उत्सवस्यांशरूपेण सम्पूर्णे देशे वन्दे मातरम् इत्यस्य सामूहिकगायनस्य आयोजनं भविष्यति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः अद्य श्रीविजयपुरं नगरस्य फ्लैग पॉइंट इत्यत्र हरघर तिरंगा अभियाने भागं स्वीकृत्य राष्ट्रध्वजम् उत्तोलयिष्यति। उपराष्ट्रपतिः ह्यः अण्डमान निकोबार द्वीपानां द्विदिवसीय यात्रायै श्रीविजयपुरं नगरे सम्प्राप्तवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति राष्ट्रपति आरक्षक वर्ण प्रदान समारोहे भागं ग्रहीष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार।
2: मीडियम वेव 438 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 पर आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7 बजे हैं जन सूचनाएं। स्थानीय मौसम कार्यालय से आज सवेरे प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 13.5 मिलीमीटर वर्षा हुई। सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 92% तथा न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल शाम द्वीपों का अधिकतम तापमान रहा 30.4 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय सवेरे 5:08 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:42। मौसम के बाद अब विमान की उड़ान संबंधी सूचना। एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा तथा विमान संख्या 2936 की श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान होगी दिन के 11:40 पर। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार विमान की उड़ान संबंधी सूचना।

श्रोताओं, अब से कुछ देर बाद यानी सवेरे 7:15 पर प्राइमरी चैनल पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर आप सुन सकेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। तत्पश्चात 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर आनंद लीजिए गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का। आज सवेरे 9:55 पर माननीय उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन द्वारा हर घर तिरंगा 2026 राज्य समारोह के उद्घाटन का डॉक्टर BR अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान डॉलिगन से सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसे प्राइमरी चैनल के अलावा FM 100.9 MHz पर भी सुना जा सकता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस अंतराल के बाद।

0: परेशानी से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। सेलुलर जेल पहुंचकर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता सेनानियों को दी श्रद्धांजलि। वीर सावरकर को बताया निर्भीक क्रांतिकारी और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। उपराष्ट्रपति आज डॉ. भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम तिरंगा कॉन्सर्ट ऑन वंदे मातरम में शामिल होंगे। मध्योत्तर अंडमान जिला पुलिस ने तटरक्षक बल के साथ शुरू किया ऑपरेशन ब्लू शील्ड। अवैध शिकार के खिलाफ कार्रवाई में म्यांमारी नागरिक पकड़े गए। और समाज कल्याण निदेशालय ने नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को किया जागरूक। आईआरसीए की परामर्श, उपचार और पुनर्वास सेवाओं की दी जानकारी।

0: सुबह के समाचारों के साथ मैं ज्योति लकड़ा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल का दौरा किया और देश की आजादी के लिए अमूल्य बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की और वीर सावरकर की कोठरी में श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्वतंत्र ज्योति, केंद्रीय टावर, फांसीघर, संग्रहालय और प्रदर्शनी दीर्घा का भी दौरा किया। श्री राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता संग्राम की वीरगाथा पर आधारित लाइट एंड साउंड शो भी देखा। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने वीर सावरकर को अद्वितीय और निर्भीक क्रांतिकारी बताया। उन्होंने कहा कि सावरकर का देशभक्ति से ओतप्रोत जीवन कई पीढ़ियों के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को जेल भेजने का उद्देश्य उनका मनोबल तोड़ना था, लेकिन सावरकर कभी हतोत्साहित नहीं हुए और अंततः अंग्रेजी राज का मनोबल टूट गया।
1: Cellular jail, the designing and the construction prevents every freedom fighter not to meet others. And it shows how much hard this our great independent warriors have undergone. That is getting reflected. When you enter this cellular jail, where Savarkar and another other great warriors,

0: who fought, and I have been jailed here without meeting anyone. The British Raj wants to demoralize every freedom fighter. All these things is coming to your mind, that is giving a big patriotic feeling. Once you put your step inside the cellular jail, your good, great, burning patriotism is again lightened in your heart. Those who visit here, they can understand freedom of India has now never come without hurdles, without great sacrifice. Veer Savarkar's cell has not been destroyed by the earthquake of that time. So this shows when your intention is right, God will be always with you.
1: इससे पहले श्री राधाकृष्णन के राजधानी श्री विजयपुरम स्थित आईएनएस उत्कृष पहुंचने पर उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डीके जोशी ने उनका स्वागत किया। उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उपराष्ट्रपति दो दिन के द्वीप समूह के दौरे पर हैं। इस दौरान वे हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति आज सुबह 10 बजे डॉ भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम तिरंगा कॉन्सर्ट ऑन वंदे मातरम में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति इस अवसर पर सभागार परिसर में लगाई गई हर घर तिरंगा प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि युवाओं को यह सोचना चाहिए कि उनके कार्यों से देश को कैसे लाभ हो सकता है और उसकी जरूरतें कैसे पूरी की जा सकती हैं। प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की चुनौतियों का सामना करते हुए राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है। अगले 30 से 35 वर्षों में स्नातक विद्यार्थियों का कार्य विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री मोदी ने कहा कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे नए क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो विकसित भारत के निर्माण का मजबूत आधार बनेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, पुलिस कार्रवाई और समाज कल्याण। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मध्योत्तर अंडमान जिला पुलिस ने भारतीय तटरक्षक बल के साथ मिलकर डिगलीपुर के तटीय क्षेत्रों में अवैध शिकार गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन ब्लू शील्ड अभियान के तहत 9 म्यांमारी नागरिकों को पकड़ा। सूचना के आधार पर टीम ने हिरण टेकरी के पास एक संदिग्ध डिंगी देखे जाने के बाद संयुक्त खोज अभियान चलाया और नाव से लगभग 300 किलोग्राम सी कुकुम्बर और जीवन रक्षक उपकरण जब्त किया। तलाशी अभियान के दौरान टीम ने 5 म्यांमारी नागरिकों को पकड़ा। इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों से मिली जानकारी के आधार पर और 4 म्यांमारी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रीय तिरंगे के सम्मान और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सैल्यूट तिरंगा संगठन की ओर से कल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह यात्रा शाम 3:30 बजे से सेलुलर जेल से शुरू होकर गांधी प्रतिमा पहुंचकर संपन्न होगी। प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत हाल ही में पीएम श्री राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मायबंदर में पहचान और आकलन शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 8 विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने भाग लिया। चिकित्सकों की टीम ने बच्चों का आवश्यक स्वास्थ्य आकलन किया। शिविर का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शुरुआती पहचान, आकलन और उन्हें उचित सहायता उपलब्ध कराना था। राष्ट्रीय मादक पदार्थ मांग में कमी कार्य योजना के तहत समाज कल्याण निदेशालय ने माइल तिलक गांव और गुप्तापाड़ा फिश लैंडिंग सेंटर में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में शराब और मादक पदार्थों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। लोगों को नशा मुक्ति और पुनर्वास के लिए एकीकृत नशा पुनर्वास केंद्र में उपलब्ध परामर्श

0: उपचार और पुनर्वास सेवाओं के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम में युवाओं और अभिभावकों से नशामुक्त समाज बनाने में सहयोग देने की अपील की गई। अंत में प्रतिभागियों ने नशे को ना जिंदगी को हाँ की शपथ ली। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान संस्थान के बाल रोग विभाग ने 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया। इस वर्ष की थीम थी सतत जीवन की शुरुआत के लिए स्तनपान जो कारगर है उसे मजबूत करें। इस दौरान स्तनपान के महत्व और शिशु एवं छोटे बच्चों के बेहतर पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्तनपान के लाभ और इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने का संदेश दिया। अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन की ओर से राज्य स्तरीय अंडर-13 चेस चयन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में युवा शतरंज खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए भाग लिया। ओपन वर्ग से रोहन सिंह और सचित बाड़ा तथा बालिका वर्ग में कृष्णप्रिया बी राजेश और आराध्या राय 3 से 9 सितंबर तक पुदुचेरी में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय अंडर-13 चेस चैंपियनशिप में द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेल्यूलर जेल पहुंचकर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता सेनानियों को दी श्रद्धांजलि। वीर सावरकर को बताया निर्भीक क्रांतिकारी और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। उपराष्ट्रपति आज डॉ. भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम तिरंगा कॉन्सर्ट ऑन वंदे मातरम में शामिल होंगे। मध्योत्तर अंडमान जिला पुलिस ने तटरक्षक बल के साथ शुरू किया ऑपरेशन ब्लू शील्ड। अवैध शिकार के खिलाफ कार्रवाई में म्यांमारी नागरिक पकड़े गए। और समाज कल्याण निदेशालय ने नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को किया जागरूक। IRCA की परामर्श, उपचार और पुनर्वास सेवाओं की दी जानकारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम देश रागिनी।

देश रागिनी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत केवल हमारा देश नहीं बल्कि हमारी भारत माता है। इसकी नदियों में माँ की ममता है, इसके पर्वतों में दृढ़ता है और इसकी मिट्टी की कण कण में हमारी भावनाएं बसी हुई हैं। तभी तो हम गर्व से कहते हैं, भारत देश हमारा है।

हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जहाँ अनेक भाषाएं हैं, अनेक वेशभूषाएं हैं, पर हमारा दिल एक है। तभी तो हम गर्व से कहते हैं वंदे मातरम। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, देश प्रेम वो एहसास है जो हमारी धड़कनों में बसता है। हमने इस धरती पर जन्म लिया, इस मिट्टी में खेले हैं हम, इसकी हवा में हमने सांसें ली। जब तक हमारी सांसें चलेंगी, आइए हम सब मिलकर बनाएं हमारे देश को उन्नत। इसी दुआ के साथ दीजिए इजाजत कार्यक्रम से। नमस्कार।

0: देश रागिनी मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है रविवार, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 18वीं तिथि यानी 9 अगस्त सन 2026। आज ही के दिन सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने पूरे देश में एक नए संघर्ष का रूप लिया था। ये केवल आंदोलन नहीं था, ये करोड़ों भारतीयों का सम्मान की आवाज थी। ये उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों की साहस की कहानी थी जिन्होंने लाठियां खाई, जेल गए, यातनाएं सही, लेकिन अपने कदम पीछे नहीं हटाए। किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने अपना सुख छोड़ा, तो किसी ने देश की आजादी के लिए अपना जीवन तक न्योछावर कर दिया। आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर आइए हम उन सभी ज्ञात अज्ञात वीरों को करें नमन जिनके त्याग और बलिदान की नींव पर हमारा स्वतंत्र भारत खड़ा है।

में ये गीत था 72 आवर्स फिल्म से। कार्यक्रम का अगला गीत है परदेश फिल्म से। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति, हरिहरन और साथियों की।

0: गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो, अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं शकील आजमी का लिखा एवं रूप कुमार राठौर का संगीतबद्ध किया हुआ गीत मदहोशी फिल्म से। आवाजें हैं उदित नारायण और साधना सरगम की।

अनु मलिक के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए बादल फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की। गीत रचना समीर की।

0: सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों के गाए बादल फिल्म के इस गीत के साथ ही गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम से चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का। श्रोताओं, आज सवेरे 9:55 से माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन द्वारा हर घर तिरंगा 2026 राज्य समारोह के उद्घाटन का डॉक्टर बीआर अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान डॉलीगंज से सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसे प्राइमरी चैनल के अलावा एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना जा सकता है। समय याद रखिएगा, आज सवेरे 9:55 से। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को है। अब कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जीडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
5: घर, घर,

हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर पुद्दुचेरी में हैं। श्री शाह गोरीमेडू के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासीवयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुडुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे पुडुचेरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।
2: सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांगें विस्तार से सरकार के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने JPSC JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम

0: के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
2: उड़ीसा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। IMD ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगड़ा और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों का जल स्तर बढ़ने से यहां निचले और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ आने का डर सता रहा है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में पूरी तैयारी बनाए हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया की एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की अश्मिता चालिहा और चीन की क्यू हान के बीच मुकाबला जारी है। मैच का पहला गेम क्यू हान ने 21-14 से अपने नाम कर लिया है। अमरीकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमरीका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, युवा सिर्फ सवाल न पूछे समाधान भी खोजे, भारत को नए शोध की जरूरत। जनसत्ता की सुर्खी है, बिना सोचे समझे स्वीकार की जाने वाली बातों पर सवाल उठाएं विद्यार्थी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, याद रखिएगा जो सीखेगा वो जीतेगा। जेंजी को PM ने दिया संदेश, कहा पैकेज और नौकरी की तुलना करने से बचे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जेंजी के रंग में मोदी, सतपुड़ा के पराठे, हॉस्टल निकनेम के साथ भविष्य की सीख, आरा कारा विंधी जिया सराय का पोहा। पंजाब केसरी ने अकाली भाजपा का गठजोड़ शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, राज्य स्तर पर जब भी पंजाब में अकाली दल के

0: में प्रकाश सिंह बादल या उनके पुत्र सुखबीर बादल की सरकार बनी, उसमें भाजपा के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन अकाली जनसंघ गठजोड़ की इस विरासत में इस दौरान राज्य की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप मूलभूत बदलाव भी आते रहे हैं। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हाइब्रिड और ईवी कारें सस्ती होंगी, ज्यादा प्रदूषण वाली होंगी महंगी, ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव, नई पॉलिसी अप्रैल 2027 से लागू होंगी। अमर उजाला की सुर्खी है, अंतरिक्ष के कचरे से होगा कारोबार, मलबा हटेगा, उपग्रहों की मरम्मत भी एस्ट्रोस्केल क्लियर स्पेस जैसी कंपनियों ने शुरू किया काम। जनसत्ता ने आस्था शीर्षक से विशेष खबर में लिखा है, कावड़ियों पर पुष्प वर्षा, परंपरागत के साथ आधुनिक व्यंजन भी, मुख्यमंत्री योगी ने कहा 4.5 करोड़ कावड़िए जल लेकर आएंगे, श्रद्धालु अपने इलाके में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। लोकसत्ता के अनुसार E20 विवाद के बीच सरकारी तेल कंपनियों का दावा, ईंधन पूरी तरह सुरक्षित, न घटेगी माइलेज, न खराब होगा इंजन। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार बठिंडा में हनी ट्रैप गिरोह, 23 महिलाओं समेत 28 काबू, वायुसेना अफसर ने पाक को दी सैन्य जानकारी, गिरफ्तार। दैनिक जागरण का शीर्षक है, एआई ने भारत में जितनी नौकरियां घटाई उससे 2.5 गुना ज्यादा पैदा की, नोमुरा की रिपोर्ट में दावा, 83,100 एआई से जुड़ी नौकरियां बढ़ी, 31,921 पर पड़ा असर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप की अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discuss ways to further strengthen comprehensive global strategic partnership in key areas. Har Ghar Tiranga campaign begins today, coinciding with 150th anniversary of India's national song Vande Mataram. Appointment of 30 judges for High Courts of Madras, Calcutta, Madhya Pradesh and Karnataka notified. Amarnath Yatra to remain suspended from both Pahalgam and Baltal routes due to repair of tracks and forecast of bad weather. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Uttarakhand and Chhattisgarh today. Sagnik Roy and Sayantan Kushari win gold medal in under 31 pairs at 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. Mr. Modi received a phone call from Vice President Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defence, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Narendra Modi has said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi, yesterday, the Prime Minister cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat.
3: Aaj Bharat economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. Yahi Viksit Bharat ki majboot neev ka saboot hai. Is majboot neev par आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
2: He further urged the students to keep the national interest at the center

0: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुँचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: सुगम संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं गीत बाबुल सुप्रियो की आवाज में।

0: गालिब की लिखी ये गजल थी रूप कुमार राठौर की आवाज में। सुगम संगीत का ये कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप बाबुल सुप्रियो और रूप कुमार राठौर की आवाजों में चंद गीतों एवं गजलों का लुत्फ ले रहे थे।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज सवेरे 9:55 से माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन द्वारा घर घर तिरंगा 2026 राज्य समारोह के उद्घाटन का डॉक्टर बीआर अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान डॉलीगंज से सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसे प्राइमरी चैनल के अलावा एफएम 100.9 MHz पर भी सुना जा सकता है। समय याद रखिएगा सवेरे 9:55 से।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल जगत।

बाल जगत कार्यक्रम सुनने वाले मेरे सभी नन्हे दोस्तों को आपकी रीता दीदी का बहुत सारा प्यार। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे नन्हे दोस्त आज के कार्यक्रम के लिए काफी उत्सुक होंगे, है ना? तो चलिए अपने रेडियो सेट के पास आ जाइए और सुनिए आपका पसंदीदा बाल जगत कार्यक्रम। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास के उस स्वर्णिम और निर्णायक अध्याय की, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, अगस्त क्रांति यानी ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन की बातें। हम स्मरण करते हैं उन तमाम अज्ञात और ज्ञात अमर सेनानियों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्र हवा में सांस लेने का अवसर दिया। आइए यह संकल्प लें कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान से सींचे गए इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की हम हमेशा रक्षा करेंगे। इस आंदोलन की सबसे खास और दिलचस्प बात यह थी दोस्तों कि इनमें हमारी और आपकी उम्र के छोटे छोटे बच्चों ने भी बहुत सी कमाल की साहसी भूमिका भी निभाई थी। इतिहास के पन्नों में बच्चों के इन छोटे छोटे समूह को वानर सेना के नाम से जाना जाता है। ये नन्हे वीर बच्चे सुबह सुबह सड़कों पर प्रभात फेरियां निकालते थे, हाथों में तिरंगा झंडा थामकर देशभक्ति के तराने गाते थे और अंग्रेजों की पैनी नजर से बचकर देश के गुप्त संदेश, पर्चे और जरूरी सामान एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का जोखिम भरा काम किया करते थे। सोचिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात थी कि 10 से 12 साल के ये बच्चे पुलिस की लाठियों और बंदूकों से बिल्कुल नहीं डरा करते थे। जब देश के बड़े बड़े लोग जेलों में बंद थे, तब इन बाल सेनानियों ने जुलूसों का नेतृत्व किया और रैलियों में आगे रहकर तिरंगे को कभी झुकने नहीं दिया। कई बार पुलिस इन बच्चों पर लाठियां बरसाती थी, इन्हें पकड़कर जेल में डाल देती थी, फिर भी इन छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर सिकंज तक नहीं आती थी।

ने साबित कर दिया कि देश प्रेम की भावना उम्र की मोहताज नहीं होती। उनकी इसी अदम्य साहस और पक्के इरादे ने अंग्रेजों को यह एहसास दिला दिया, अब उनका भारत में एक दिन भी टिकना नामुमकिन हो चुका है। मेरे नन्हे दोस्तों, आज जब हम इस ऐतिहासिक आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो यह सोचना बहुत जरूरी है कि हमें यह आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। हमें देश के उन अनगिनत वीर सैनिकों और छोटे छोटे बाल वीरों ने अपने बचपन, अपने सपनों और अपनी जान की बाजी लगाकर हमें यह स्वतंत्र हवा दी है जिसमें आज हम सांस ले रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, हम सबका यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश से बेशुमार प्यार करें, अपनी पढ़ाई पूरी ईमानदारी और मेहनत से करें और एक अच्छे जिम्मेदार और काबिल नागरिक बनकर अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। यही हमारे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों और बाल वीरों को सबसे सच्ची और खूबसूरत श्रद्धांजलि होगी। तो दोस्तों, इन विचारों को आगे बढ़ाते हैं और आपको ले चलते हैं आपकी अक्षिता दीदी के पास और जानते हैं उनके

नहीं दोस्तों, अगस्त जब देश के बच्चे बच्चे ने गुलामी की बेड़ियों को हमेशा के लिए तोड़ लेने का संकल्प लिया था। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में हुई थी। इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। इस आंदोलन की वर्षगांठ हर साल अगस्त को देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए मनाई जाती है, जिसका लक्ष्य भारत के ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। अगस्त 1942 की शाम को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुंबई सत्र में अंग्रेजी भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालें और तोड़फोड़ की कार्यवाहियों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य

भूमिगत प्रतिरोधी गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार प्रति सरकार की स्थापना कर दी गई थी। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफी सतर्क रवैया अपनाया, फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज्यादा समय लग गया। महात्मा गांधी जी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का मूल्य मसौदा, जो उनकी अपनी हस्तलिपि में लिखा गया था, और कई कागजात 26 मई 1942 को ब्रिटिश राज्य पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया था। युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल ने गांधी जी की योजना के बारे में भी चर्चा की। ब्रिटेन को बाहर निकालकर भारत को जापानी साम्राज्य का उपनिवेशन बनाया जाए, यदि हम उनके साथ पूर्व असहयोग करने लगे तो इसका अर्थ होगा कि हम अपने देश को जापानियों के हाथ में दे रहे हैं। इसलिए ब्रिटिश सेनाओं के रास्ते में कहीं रुकावट नहीं डालना ही एकमात्र तरीका है। ये प्रदर्शित करने का हम जापानियों के साथ असहयोग कर रहे हैं। उनके हाल के जरिए से यदि हम आकलन करने का प्रयास करें तो उन्हें हमारी किसी भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। बस हम उनके मामले में दखल ना दें। उन्हें हमारी सहायता सिर्फ दासों के रूप में ही चाहिए। विदेशी सैनिक समिति की राय है कि विदेशी सैनिकों को भारत में प्रवेश भारत के हित के विरुद्ध और भारत की स्वतंत्रता के लिए खतरनाक है। इसलिए समिति ब्रिटिश सरकार से यह अपील करती है कि विदेशी सैन्य बलों को यहाँ से हटाए और आगे से इन्हें यहाँ नहीं आने दे। खत्म होने वाली जनशक्ति मौजूद है और ये एक सबूत है ब्रिटिश साम्राज्य की अनैतिकता का। भारत छोड़ो आंदोलन सही मामले में एक जन आंदोलन था जिनमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। वह अगस्त की भोर थी, नई एक जिद मचल उठी। गुलामी की जंजीरों से हर दीवार पिघल उठी। गुलामी की जंजीरों से हर दीवार पिघल उठी। ग्वालियर टैंक के माध्यम से जब गूंजी एक हुंकार, हिल उठा था थर थर कर फिरंगी का वो दरबार। बापू ने जब देश को एक नया ही मंत्र दिया, करेंगे या मरेंगे का लहू में रंग भर दिया। ना कोई नेतृत्व था बाकी, ना कोई हुंकार की डोरी। खुद बन गए सेनानी, जनता ने ठान ली डोरी। खेतों में हल छोड़ के आए कल कारखानों से वीर। माताएं और बहनें निकली लेकर हाथों में तीर तस्वीर। जेलों में भर दी दीवारें पर हौसला ना कम हुआ। हर हिंदुस्तानी के दिल में आज़ादी का मरहम हुआ। वो भारत छोड़ो का नारा इतिहास में मरहम हुआ। अंग्रेजों का हर वो सपना पल भर में खंड खंड हुआ। आज उन्हीं बलिदानियों को हम शीश झुकाते हैं। तिरंगे की छाव में बैठकर उनका यश गाते हैं। आरजू आज़ाद रहने की बगावत कर गई। वह अगस्त का महीना था जब देश की रग रग में आज़ादी की जिद मचल उठी। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था। इस आंदोलन ने पूरे देश को स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया और अतः 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। यह आंदोलन हमें देश प्रेम, एकता और अहिंसात्मक संघर्ष का संदेश देता है। तिरंगे की शान है मोर।

डॉक्टर कमल का मान है। मोर के पंखों सा रंगीन है भारत, मोर के पंखों सा है रंगीन भारत, कमल सी पवित्र हमारी माटी की शान, कमल सी पवित्र हमारी माटी की शान। जब बादलों के बीच मोर अपने शौर्य के पंख फैलाकर झूमता है और कीचड़ को चीरकर हर भारतवासी के दिल में कमल का पराक्रम खिलता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक गूंजता जिसका गौरवशाली इतिहास है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक गूंजता जिसका गौरवशाली इतिहास है, तो दुनिया देखती है इस महान राष्ट्र की अजय और अधम्य शान, तो दुनिया देखती है इस महान राष्ट्र की अजय और अधम्य शान। विविधता में एकता का धागा, विविधता में एकता का धागा एक भारत श्रेष्ठ भारत की असली पहचान है। विविधता में एकता का धागा एक भारत श्रेष्ठ भारत की असली पहचान है। गर्व से कहो मेरा भारत देश ही मेरी जान है, गर्व से कहो मेरा भारत देश ही मेरी जान है। घने बरगद की छाव सा गहरा है मेरा इतिहास, घने बरगद की छाव सा गहरा है मेरा इतिहास। मीठे आम की मिठास सा महकता मेरा हर विश्वास, मीठे आम की मिठास सा महकता मेरा हर विश्वास। बाग के शौर्य और पराक्रम से गूंजती है जिसकी हर चाल, बाग के शौर्य और पराक्रम से गूंजती है जिसकी हर चाल। एक भारत श्रेष्ठ भारत की आन बान शान बेमिसाल, जड़ से लेकर आसमान तक जिसकी संस्कृति है। गर्व से कहो यही है हमारा अतुल्य और अमर हिंदुस्तान।

मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज के बच्चे ही कल के इस देश की असली ताकत और तस्वीर हैं? इसी सोच को ध्यान में रखते हुए हम लाए हैं हम वर्तमान और हम भविष्य नामक विषय पर बातें।

बाल जगत कार्यक्रम पूरी तरह से आप बच्चों को समर्पित है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को केवल आज का एक जागरूक नागरिक बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें आने वाले कल के भारत का एक जिम्मेदार, सक्षम और महान भविष्य निर्माता तैयार करना है। बच्चों को उनकी छुपी हुई प्रतिभाओं को पहचानने, सही दिशा चुनने और अपने सपने को ऊंची उड़ान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। दोस्तों, हम वर्तमान और हम भविष्य, एक बहुत बड़ा उद्देश्य बच्चों

एक जागरूक नागरिक बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें आने वाले कल के भारत का एक जिम्मेदार, सक्षम और महान भविष्य निर्माता तैयार करना है। बच्चों को उनकी छुपी हुई प्रतिभाओं को पहचानने, सही दिशा चुनने और अपने सपने को ऊंची उड़ान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। दोस्तों, हम वर्तमान और हम भविष्य, एक बहुत बड़ा उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। आज के डिजिटल दौर में बच्चों को सही मार्गदर्शन देना बहुत जरूरी है। अच्छे नैतिक मूल्य, बड़ों के प्रति आदर, पर्यावरण की रक्षा और मानसिक स्वास्थ्य जैसे गंभीर विषयों पर भी बहुत सी सरल और दोस्ताना तरीके से चर्चाएं की जाती है। दोस्तों, नाम से ही साफ है, हम वर्तमान यानी आज का हर एक बच्चा देश का वर्तमान है और हम भविष्य यानी आने वाला कल उन्हीं के हाथों में सुरक्षित और उज्जवल होने वाला है। यह रेडियो कार्यक्रम बच्चों को एक एहसास कराता है कि वे छोटे जरूर हैं, लेकिन कमजोर नहीं। उनकी छोटी छोटी कोशिशें और अच्छे काम ही आगे चलकर एक महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इसीलिए दोस्तों, इस तरह की ज्ञानवर्धक बातों को सुनना, उनसे अच्छी बातें सीखना और अपने जीवन में उतारना हम सबका कर्तव्य है, ताकि हम सब मिलकर अपने देश के वर्तमान को भी सुंदर बना सके और भविष्य को भी स्वर्णिम कर सके। आजादी।

स्वतंत्रता दिवस का पावन अवसर बच्चों को केवल इतिहास ही नहीं बल्कि जीवन की बहुत बड़ी सीख दी जाता है। बच्चों, आजादी केवल एक उत्साह नहीं है बल्कि यह हमारे देश के सेनानियों के अंतिम बलिदानों का परिणाम है जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। बच्चों, सच्ची देशभक्ति केवल एक दिन नारे लगाने से नहीं बल्कि अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे अच्छे कामों से पूरी होती है, जैसे अपने देश और पर्यावरण को साफ सुथरा रखना, हर व्यक्ति का सम्मान करना, अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करना और मन लगाकर पढ़ाई करके देश का नाम रोशन करना। यह हमारा संदेश दोस्तों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के साथ साथ उन्हें एक जिम्मेदार, अनुशासित और अच्छा इंसान बनाने की प्रेरणा देता है। बच्चों, हर घर तिरंगा सिर्फ एक झंडा फहराने का कार्यक्रम नहीं बल्कि यह हमारे देश में देश प्रेम को जगाने का एक जरिया है। जब आप अपने घर की छत पर या बालकनी पर तिरंगा लहराते हैं तो यह इस बात का प्रतीक होता है कि हम अपने देश से कितना प्यार करते हैं। यह अभियान हमें हमारे उन वीर जवानों, उन स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इस अभियान में हमारे प्यारे बच्चे भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आप अपने घर पर तिरंगा लगाने में अपने बड़ों की मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही आप तिरंगे के साथ अपनी एक सुंदर सी तस्वीर या सेल्फी विद तिरंगा आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करके इस राष्ट्रव्यापी उत्साह का हिस्सा बन सकते हैं। यह पल आपके लिए हमेशा के लिए एक यादगार और गर्व भरा लम्हा बन जाएगा। तो दोस्तों, चलते चलते आने वाली स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हमेशा सम्मान करेंगे, इसकी शान पर कभी आंच नहीं आने देंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आपकी रीता दीदी आपसे ले रही है अनुमति। अपना ध्यान रखिएगा।

श्रोताओं, अभी आप बाल जगत कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। श्रोताओं, आज सवेरे 9:55 से माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन द्वारा हर घर तिरंगा 2026 राज्य समारोह के उद्घाटन का डॉक्टर बीआर अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान डॉलीगंज से सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसे प्राइमरी चैनल के अलावा एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना जा सकता है। समय याद रखिएगा, सवेरे 9:55 से।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 9:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

दोस्तों, कुछ रंग केवल रंग नहीं होते, वे हमारी पहचान होते हैं। कुछ निशान केवल निशान नहीं होते, वे हमारे गौरव और स्वाभिमान की कहानी बयां करते हैं। तीन रंगों से रंगा तिरंगा जब आसमान में लहराता है, हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ऐसे में बस यही आवाज़ निकलती है हमारे दिलों से।

कहते हैं दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता वही है जहां बिना किसी स्वार्थ के प्रेम हो। हमारे देश भारत के साथ हमारा रिश्ता कुछ ऐसा ही है। ये हमारी जन्मभूमि है, हमारी कर्मभूमि है और हमारी पहचान है। हमारा देश भारत हमें जान से प्यारा है।

समय का एक दौर ऐसा भी था जब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। चारों ओर निराशा थी, लेकिन भारतीय के दिलों में आज़ादी की लौ जल रही थी। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन जब मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध करो या मरो आंदोलन शुरू किया। अगले दिन 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन ने पूरे देश में एक नए संघर्ष का रूप लिया। ये केवल आंदोलन नहीं था, ये करोड़ों भारतीयों के स्वाभिमान की आवाज़ थी, उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों की साहस की पहचान थी जिन्होंने लाठियां खाई, जेल गए, यातनाएं सही, लेकिन अपने कदम पीछे नहीं हटाए।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुँचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

हमारे राष्ट्रीय ध्वज की अनोखी शान है। इसके तीन रंगों में हमारे साहस की कहानी, शांति की पहचान और हमारे सपनों की हरियाली है। इस तिरंगे की आन बान शान हमेशा ऊंचा रहे, यही हमारा प्रयास रहेगा।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 9:55 पर आप सुनेंगे माननीय उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन द्वारा हर घर तिरंगा 2026 राज्य समारोह के उद्घाटन का डॉक्टर BR अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान डॉलीगंज से सीधा प्रसारण।

नमस्कार। वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। हे मातृभूमि, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम जल से परिपूर्ण हो, फलों से संपन्न हो। मलय पर्वत की शीतल और सुगंधित वायु तुम्हें शीतल बनाती है और तुम हरी भरी लहलहाती फसलों से आच्छादित हो। हे माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। ये वो शब्द हैं जिन्होंने पराधीन भारत की चेतना को झकझोरा, सोई हुई आत्मा को जगाया और करोड़ों भारतीयों के हृदय में स्वतंत्रता का दीप प्रज्वलित किया। आकाशवाणी श्री विजयपुरम के सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज का दिन भारत के इतिहास में एक अद्भुत संगम लेकर आया है, राष्ट्रभक्ति का, स्वाधीनता के संकल्प का और तिरंगे के सम्मान का। आज 9 अगस्त है, वो ऐतिहासिक दिन जब वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति का शंखनाद हुआ था। महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान ने पूरे देश में स्वतंत्रता की ऐसी अलख जगाई जिसने अंततः भारत को आजादी के लक्ष्य तक पहुंचाया। और आज ही से आरंभ हो रहा है हर घर तिरंगा अभियान 2026, एक ऐसा अभियान जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को हर घर तक, हर भारतीय के हृदय तक पहुंचाने का संदेश देता है। आज का ये अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस वर्ष हम कालजयी गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने का गौरव मना रहे हैं। श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से निकला ये अमर गीत केवल एक कविता नहीं बल्कि भारत की आत्मा की पुकार है। प्रिय श्रोताओं, स्वतंत्रता संग्राम के अनगिनत सेनानियों के होठों पर वंदे मातरम था, क्रांतिकारियों की धड़कनों में वंदे मातरम था, बलिदानियों की अंतिम सांसों में वंदे मातरम था। ये केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय चेतना का उद्घोष था। श्रोताओं, आज प्रातः श्री विजयपुरम के ऐतिहासिक फ्लैग पॉइंट पर भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। और अब कुछ ही पलों बाद वे इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित हो रहे वंदे मातरम पर आधारित हर घर तिरंगा कॉन्सर्ट के राज्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। इस भव्य संगीत महोत्सव में अंडमान निकोबार के प्रतिभाशाली कलाकार देशभक्ति से ओतप्रोत गीत संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की अनुपम छटा बिखेरेंगे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां इस अवसर पर बरबस स्मरण हो आती हैं। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां जिनकी बारी बारी, छिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। आज का ये आयोजन उन सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को हमारी श्रद्धांजलि भी है जिनके त्याग और बलिदान से हमने स्वतंत्रता पाई। कुछ ही पलों बाद हमारे मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन जी सभागार स्थल पहुंच रहे हैं, जहां हर घर तिरंगा कॉन्सर्ट का शुभारंभ होगा।

स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हमने 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया था। यह आजादी हमारे उन वीर स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान से अर्जित हुई है। देश प्रेम के उन आदर्शों को, उन ऊंचे मानकों को अपने दिलों में बसाते हुए हमने प्रण लिया है कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का, और देश चल पड़ा है उसी दिशा में। हमारे क्रांतिवीरों के वही आदर्श आज हमारे संबल बनकर हमें कर्मयोग के पथ पर निरंतर गति प्रदान कर रहे हैं और हमारे कदम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ आज माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी ने किया। फ्लैग पॉइंट पर उन्होंने ध्वजारोहण किया और अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित इस समारोह में हर घर तिरंगा कॉन्सर्ट का शुभारंभ वे करेंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर अपने दो दिवसीय यात्रा पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन हुआ है। कल उन्होंने राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल जाकर क्रांतिकारियों को, मां भारती के सपूतों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, स्वतंत्र वीर सावरकर को अपने श्रद्धांजलि दी और अब उपराष्ट्रपति महोदय सभागार स्थल पधार चुके हैं। द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल महोदय एडमिरल डी के जोशी ने उनका स्वागत किया और अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम।

0: जहां सागर की लहरें भारत की गाथा गाती हैं, जहां हरित वन प्रकृति का अनुपम श्रृंगार सजाते हैं, जहां हवाओं में स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और तपस्या की स्मृतियां आज भी जीवंत हैं, यह वही धरती है जहां प्रकृति ने अपना अनुपम सौंदर्य बिखेरा है और इतिहास ने राष्ट्रभक्ति, साहस और बलिदान की अमिट गाथाएं अंकित की हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक चेतना से अनुप्राणित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की इस पावन धरती पर भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी, आपका आदरपूर्ण स्वागत एवं अभिनंदन। आपकी गरिमामय उपस्थिति से आज का यह अवसर हमारे लिए और भी अधिक विशिष्ट एवं अविस्मरणीय हो उठा है।
1: और अब मैं आमंत्रित करती हूँ मुख्य सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन श्रीमती चंचल यादव जी को कि वे अपने स्वागत संबोधन द्वारा माननीय उपराष्ट्रपति जी का अभिनंदन करें। मुख्य सचिव अंडमान एवं निकोबार प्रशासन।
2: ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री सीपी राधाकृष्णन जी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एडमिरल डीके जोशी जी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम, चेयरपर्सन श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल, अध्यक्ष साउथ अंडमान जिला परिषद, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑफिशियल्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टीम्ड मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस, इट इज़ विद इमेंस प्राइड दैट आई वेलकम यू ऑल टू टूडेज स्टेट फंक्शन सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ हर घर तिरंगा। As the tricolor flies proudly in our homes and the call of Vande Mataram resonates across the country, we come together to reaffirm our love for the motherland and remember the sacrifices that made our freedom possible. The Andaman and Nicobar Islands hold a very special place in India's national struggle and have a deep connect with the national flag, Tiranga. Since 1858, countless freedom fighters have been brought here into exile. They endured hard labor, torture, disease, and even death. Yet, their spirit of resilience never diminished. Their sacrifices have made these islands a pilgrimage of courage and nationalism. The islands also hold a unique place in the history of the national flag. On 30th December 1943, Netaji Subhash Chandra Bose hoisted the Tiranga here, the very first time the national flag unfurled on Indian soil. The Andaman and Nicobar administration has taken the spirit of Har Ghar Tiranga beyond homes and settlements, carrying the tricolor to the remote and uninhabited islands of the Union Territory. Through the coordinated efforts of the civil administration, state police, and defense forces, the national flag has reached

धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। अब हम उस गरिमामयी क्षण की ओर बढ़ रहे हैं जब अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की ओर से माननीय उपराष्ट्रपति जी को हमारे द्वीप समूह की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक चेतना और विशिष्ट पहचान से जुड़े स्मृति चिन्ह भेंट किए जाएंगे। मैं विनम्रतापूर्वक द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय एवं उपाध्यक्ष द्वीप विकास एजेंसी एडमिरल डीके जोशी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय उपराष्ट्रपति जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करें। अंडमान की करेन जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और हस्तकला परंपरा का प्रतीक हस्तनिर्मित करेन वस्त्र द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय भारत के माननीय उपराष्ट्रपति को भेंट करेंगे।

0: मदर ऑफ पर्ल शंखों से निर्मित नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का कलात्मक चित्र वीपो के माननीय उपराज्यपाल महोदय भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी को भेंट कर रहे हैं।
1: 30 दिसंबर 1943 को नेताजी द्वारा अंडमान की धरती पर तिरंगा फहराने की ऐतिहासिक घटना का गौरवपूर्ण स्मरण 75 रुपये का स्मारक सिक्का द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय माननीय उपराष्ट्रपति जी को भेंट करते हुए। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की प्राकृतिक छटा, सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक विरासत का सुंदर दस्तावेज कॉफी टेबल बुक द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी को भेंट करते हुए। इन स्मृति चिन्हों को स्वीकार कर

0: रखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी।
1: अब मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय उपराज्यपाल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एडमिरल डी के जोशी जी को कि वे इस अवसर पर उपस्थिति को संबोधित करें। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी जी।

0: supporting infrastructure, along with a greenfield multi-purpose deep water port at Atlanta Bay, shall establish these islands as a major maritime gateway in the Indo-Pacific region. Sir, as we celebrate the rich legacy of the islands, its role in the freedom struggle, and continued efforts towards the progress of our nation, your presence here is a source of pride and encouragement to all of us, taking inspiration from our freedom fighters and their slogan of Vande Mataram. We are committed to work tirelessly towards making these islands prosperous, sustainable, and future ready, contributing to the vision of Viksit Bharat. Thank you very much for your attention. Dhanyavad. Jai Hind.
1: बहुत बहुत धन्यवाद माननीय देवियों और सज्जनों. अंडमान एवं निकोबार की इस ऐतिहासिक धरती पर भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी की उपस्थिति हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत एवं गौरवशाली क्षण है. और अब अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी को कृतार्थ करने के लिए मैं भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी को सादर आमंत्रित करती हूं. माननीय उपराष्ट्रपति जी,
2: भारत का लोकतंत्र उन असंख्य यात्राओं का साक्षी रहा है जिनमें साधारण परिवेश से निकलकर व्यक्ति अपने कर्म, समर्पण और जनसेवा के माध्यम से राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है.
3: ऑन द ओकेशन ऑफ द इनॉग्रेशन ऑफ हर घर तिरंगा अभियान द डिग्निटरीज शेयरिंग द डायस विथ मी आवर हॉनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एडमिरल डीके जोशी जी द चीफ सेक्रेटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन चंचाल यादव जी चेयरपर्सन श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल श्रीमती एम वसंदा जी अध्यक्ष जिला परिषद श्रीमान पी उमर जी भाई बहनों सबको नमस्कार. व्हेन यू थिंक ऑफ अंडमान इट्स नॉट ओनली द ब्यूटी एंड द ग्रीनिश आइलैंड्स ऑफ अंडमान कमिंग टू योर माइंड the burning patriotism which was lightened by our Savarkar and Netaji Subhas Chandra Bose will be there in the heart of every Indian citizen for many more generations to come. That's why when we are talking about Tiranga function, Har Ghar Tiranga function, then my first option I said to my Principal Secretary that we will go to Andaman. So the Andaman, the land, the sufferings and the hard days of our great warriors in the cellular jail cannot be forgotten by anyone who are always aspiring for the freedom. On the August, it is indeed to pleasure to launch this campaign today on the August Gandhi Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. On August 8, 1942, the father of the nation, Rashtrapita Mahatma Gandhiji, called for an immediate end to British colonial rule. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day. It is my first visit to this island since assuming the office of the Vice President of India. Though I am

स्वतंत्र वीर सावरकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को स्मरण करते हुए अपने उद्गार व्यक्त कर रहे थे। उन वीर स्वतंत्र सेनानियों को नमन कर रहे थे उपराष्ट्रपति महोदय, और उन्होंने कहा कि द्वीप समूह आकर गर्व की अनुभूति होती है, इस धरती को नमन करने को हृदय झुक जाता है, श्रद्धा से भर उठता है। और अब कुछ ही पलों बाद हर घर तिरंगा संगीत महोत्सव आरंभ होने जा रहा है। देशभक्ति के रंगों में सराबोर, राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत हर मन है, हर दिल है। सभागार पूरी तरह से इसी तिरंगे की धमक में जगमगा रहा है। हर घर तिरंगा का शुभारंभ हो चुका है।

0: उपराष्ट्रपति महोदय ने संतोष व्यक्त किया कि यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हर घर तिरंगे को हर व्यक्ति, हर द्वीपवासी एक जुनून की तरह इसे निभाता आ रहा है साल दर साल। पंचायती राज संस्थाओं, पंचायतों, नगरपालिका के विभिन्न वार्डों, स्कूल, महाविद्यालयों, हर जगह विद्यार्थी से लेकर आम नागरिक, हर कोई एक भारत श्रेष्ठ भारत का परिचय दे रहा है हर घर तिरंगा अभियान से जुड़कर। और अब हर घर तिरंगा संगीतमय कार्यक्रम का शुभारंभ कुछ ही पलों में।
1: शान के साथ गूंजता है वंदे मातरम, तो मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, समर्पण और राष्ट्रप्रेम की भावना और भी प्रखर हो उठती है।
2: तिरंगे के रंगों में रची, देशभक्ति की भावों से सजी और राष्ट्रप्रेम की भावना से ओतप्रोत, ये है कला एवं संस्कृति विभाग अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति हर घर तिरंगा।

ये थी कला एवं संस्कृति विभाग अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की अद्भुत प्रस्तुति। जोरदार तालियां हो जाए। मैं सभी कलाकारों से अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर आ जाएं। देयर विल बी अ फोटो सेशन विद ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।

तिरंगा हमारे दिल में है, हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, यही हमारी एकता का सूत्र भी है। यही कुछ भाव व्यक्त कर रहे थे अपने बेहतरीन प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए, अपने सांस्कृतिक गीत संगीत के कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे द्वीप समूह के ये युवा कलाकार। और वो गौरवमयी क्षण जब माननीय उपराष्ट्रपति महोदय इन छात्रों के बीच, इन कलाकारों के बीच पहुंचे हैं, हर कोई इन पलों को अपनी स्मृतियों में संजोकर रखना चाहता है। फोटो सेशन हो रहे हैं, माननीय उपराज्यपाल महोदय कलाकारों के बीच हैं, ये सभी युवा कलाकारों के लिए गौरव के पल। अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया इन कलाकारों ने। उपराष्ट्रपति महोदय ने अपने संबोधन में भी कहा था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां विभिन्न प्रांतों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, इतनी विविधता होने के बावजूद भी एकता की एक मजबूत डोर यहां साफ देखी जा सकती है। और ये एकता पूरे देश के लिए एक सुंदर उदाहरण है जो अनुकरणीय है। और अब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान।

अब मैं भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी से हर घर तिरंगा एवं वंदे मातरम पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करने हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ।

प्रिय श्रोताओं, देशभक्ति की मधुर स्वर लहरियों से सजा हर घर तिरंगा कॉन्सर्ट अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज का ये आयोजन केवल गीत और संगीत का कार्यक्रम भर नहीं था, बल्कि राष्ट्र प्रेम, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता के प्रति हमारी सामूहिक श्रद्धा का एक सजीव उत्सव था। इस समय माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज से जुड़ी तस्वीरों को संजोए हुए जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो ऐतिहासिक दौरा

जब वो 1942 28 दिसंबर को अंडमान निकोबार की इस धरती पर आए थे और उन्होंने ऐतिहासिक जिमखाना मैदान में तिरंगा फहराकर आजादी का शंखनाद किया था। उन्होंने कहा था कि आज अंडमान की ये धरती आजाद हुई है, लेकिन बहुत जल्द पूरा देश अंग्रेजों की इस दास्ता से मुक्त होगा। उन्हीं चित्रों को, उन्हीं तस्वीरों को, उन्हीं स्मृतियों को दर्शाती हुई ये प्रदर्शनी उपराष्ट्रपति महोदय काफी दिलचस्पी लेते हुए तस्वीरों को देख रहे हैं।

आज ऐतिहासिक 9 अगस्त क्रांति दिवस की उस ऊर्जा की गर्माहट से वंदे मातरम के शब्दों को नमन करते हुए अपना हर कर्म मातृभूमि को समर्पित करते हुए हर घर तिरंगा अभियान को जीते हुए हम राष्ट्र प्रथम आदर्श को अपने दिलों में बसाएं, इस आयोजन का यही उद्देश्य है। पूर्व प्रधानमंत्री और प्रखर राष्ट्रचिंतक श्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की वो प्रेरक पंक्तियां स्मरण हो आती हैं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दुपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आज की पीढ़ी देश की कर्णधार है, पूरी तरह सजग, पूरी तरह सचेत, देश प्रेम के जज्बे से सराबोर। इन्हें देखकर ये संतोष होता है कि देश का भविष्य सुरक्षित है। विरासत में जो हमें आज़ादी मिली है, हम उसको बनाए रखें, उसका संरक्षण करें, देश को वापस विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ करें, आध्यात्मिक और ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में। आज की युवा पीढ़ी इसके प्रति पूरी तरह जागरूक है, प्रतिबद्ध है। आज के इस कार्यक्रम से और यहाँ लगाई गई इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए उपराष्ट्रपति महोदय कुछ इसी तरह का अनुभव कर रहे हैं।

आज के इस कार्यक्रम में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के साथ द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी, प्रभारी मुख्य सचिव चंचला यादव, श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद की अध्यक्षा श्रीमती एम वसंता और दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष पी उमर भी इस प्रदर्शनी में विभिन्न चित्रों का, तस्वीरों का अवलोकन कर रहे हैं। ऐतिहासिक वो दृश्य जिन्होंने आजादी तक का ये सफर तय किया और अब उन द्वीपों के बारे में बताती हुई सचिव कला व संस्कृति, जिन द्वीपों का नाम देश के परमवीर पदक विजेता शूरवीरों के नाम पर रखा गया है,

कुछ समय पहले प्रधानमंत्री महोदय ने अंडमान निकोबार के कुछ द्वीपों के नाम देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले परमवीर चक्र विजेता जो सैनिक हैं, अधिकारी हैं, उनके नामों पर करने का ऐलान किया था। उन द्वीपों को देखते हुए, समझते हुए उपराष्ट्रपति महोदय दर्शक दीर्घा में योगेंद्र द्वीप, खेत्रपाल द्वीप, मनोज पांडे द्वीप, ये वो सभी बहादुर सैनिक और अधिकारी हैं, उनके नाम हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और अब वो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऐतिहासिक सेलुलर जेल का दौरा किया था 30 दिसंबर 1943 को, जब अंडमान के इन द्वीपों में जापानियों का अधिकार था। आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान आए थे और यहां पर उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सदस्यों से मुलाकात की थी और यहां की जनता ने अपने तरफ से अंशदान भी दिया था। जिमखाना मैदान में नेताजी के आह्वान पर उनके संबोधन के बाद वो गर्व का अनुभव कर रहे थे उस पल कि वो देश की आजादी के लिए बनी आजाद हिंद फौज के भले के लिए, उनकी ताकत के लिए कुछ अपना अंशदान कर पा रहे हैं। उस दौरे के दौरान नेताजी ने उस समय के रॉस द्वीप में विश्राम किया था। जिमखाना मैदान में नेताजी का संबोधन, उस तस्वीर को देखते हुए उपराष्ट्रपति महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो ऐतिहासिक दौरा, स्वाधीनता संग्राम में एक ऐतिहासिक कालखंड था, और इसके बाद से ब्रिटिश सरकार रक्षात्मक मुद्रा में आ गई थी। उन्हें यह आभास होने लगा था कि अब इस देश में राज बनाए रखना, अपना कब्जा बनाए रखना संभव नहीं होगा। क्योंकि देश का युवा जाग चुका है, देश के नागरिक अब पराधीनता को और सहन नहीं कर सकते। इसका आभास उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की उस अगस्त क्रांति से होने लग गया था, और इसके बाद से ही देश के स्वाधीन होने की पटकथा लिखी जाने लगी थी। तो इस प्रकार से अंडमान की प्रमुख भूमिका रही आजादी की लड़ाई के उस कालखंड के दौरान। हम सभी द्वीपवासियों के लिए बड़े ही गौरव की बात कि हम इतिहास का हिस्सा बन सके नेताजी के आगमन से। हालांकि जापानी क्रूरता का सच

नेताजी से छुपाया गया, जापानियों के अत्याचार और दमन का सच नेताजी नहीं जान पाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। पहला स्टाम्प जो जारी किया गया, उसे देखते हुए उपराष्ट्रपति महोदय,

आइए हम सभी संकल्प लें कि हम तिरंगे का सम्मान करेंगे, राष्ट्र की एकता, अखंडता और विविधता की रक्षा करेंगे, अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए भारत को और अधिक सशक्त, समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देंगे। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन की उपस्थिति ने हम सब में असीम उत्साह का संचार किया है। प्रधानमंत्री के विकसित भारत संकल्प से हम सभी जुड़ते जाएंगे, राष्ट्रहित सर्वोपरि के मंत्र के साथ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आकाशवाणी विजयपुरम के आज के इस विशेष सीधे प्रसारण को हम यहीं विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।

अभी आप माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन द्वारा हर घर तिरंगा 2026 राज्य समारोह के उद्घाटन का डॉ. भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान डॉलीगंज से सीधा प्रसारण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे अशोक कुमार सिंह। तकनीकी सहयोग रहा आयोजन स्थल से पीएम हुसैन, बी नट किशोर तथा एन दंडपानी का, तथा नियंत्रण कक्ष से बाइजू मैथ्यू, मधुस्मिता शील तथा हिमांजलि ओझा ने। स्टूडियो समन्वयक थी जय शीला। सजीव प्रसारण में सहयोग रहा राजी रिवाकेश्वरी तथा यशवंत कुमार का। कार्यक्रम समन्वयक थी मीना प्रकाश तथा इस संपूर्ण प्रसारण के समन्वयक थे श्री सी सुब्बाराव। और ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से प्रसारित किया गया। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम जनता जंक्शन।

नमस्कार श्रोताओं, आप जुड़ चुके हैं जनता जंक्शन कार्यक्रम के साथ और आज हम पहुंच चुके हैं ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम, जहां पर हमारे वीपो के सभी मुख्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। पूरे भारत के साथ साथ हमारे द्वीप समूह में भी नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और आज हम नेताजी स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। यहां पर भी कुछ कार्यक्रमों की तैयारियां हमें देखने को मिल रही है, तो चलिए कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो

0: आज के कार्यक्रम में श्रोताओं, मैं हेमलता,
1: मैं दीपिका,
2: मैं रचना,
0: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं साई एसटीसी के सेंट्रल इंचार्ज श्री मोहम्मद सादिक। सादिक जी, हमें ये बताइए कि नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के तहत यहाँ क्या तैयारियाँ चल रही है?
3: जी, अब नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है तो हमारे साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी हम नशा मुक्त अभियान का कार्यक्रम अच्छे से कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे कुल 80 बच्चे जो कि रेसिडेंशियल ट्रेनिंग करते हैं, उन सभी बच्चों को हम यहाँ पे नशा को अवॉइड करने के लिए हम उनको हमेशा ही उनके क्लासेस लिया करते हैं, उनके सेमिनार्स लिया करते हैं।
2: और क्या क्या कार्यक्रम आपने आयोजित किया है या करने वाले हैं?
3: जी, नशा मुक्त अभियान में हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, बच्चों के सेमिनार करते हैं, बच्चों को जागरूक करते हैं और हम इसमें कुछ फिजिकल इवेंट्स भी कराते हैं, जैसे कि संडेज ऑन साइकिलिंग, जो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का एक इनिशिएशन है, जिसमें एवरी संडे संडेज ऑन साइकिलिंग, जो कि पूरे ही भारतवर्ष में होता है, तो वैसे ही ये संडेज ऑन साइकिलिंग हमारे अंडमान निकोबार में श्री विजयपुरम में भी किया जाता है। इस बार जो आज जो कि 9th ऑफ अगस्त

0: की सेमिनार करते हैं, बच्चों को जागरूक करते हैं, और हम इसमें कुछ फिजिकल इवेंट्स भी कराते हैं, जैसे कि संडेज ऑन साइकिलिंग, जो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का एक इनिशिएशन है, जिसमें एवरी संडे संडेज ऑन साइकिलिंग, जो कि पूरे ही भारत वर्ष में होता है, तो वैसे ही ये संडेज ऑन साइकिलिंग हमारे अंडमान निकोबार में श्री विजयपुरम में भी किया जाता है। इस बार जो आज जो कि 9th ऑफ अगस्त है, तो आज हमने सुबह ये इवेंट, एक नशा मुक्त अभियान संडेज ऑन साइकिलिंग स्पेशल एडिशन हमने किया है आज सुबह ही, तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए और इसमें हम स्वच्छता को भी ध्यान दिए और स्वच्छता में भी काम किए हैं।
1: बहुत अच्छी बात है सादिक जी, आपने एक नशा मुक्त भारत अभियान के तहत साइकिलिंग आपने करवाया और स्वच्छता को भी आपने प्रमोट किया। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, इसके लिए धन्यवाद।

0: श्रोताओं, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी है एक महिला खिलाड़ी, चलिए उनसे बात करते हैं। आपका नाम?
1: Myself Anjali Nayak।
0: कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप?
1: I am in 12th।
0: साई से कब से जुड़ी हैं आप?
1: 2 साल, 2 years।
0: कौन से खेल में आप जुड़ी हैं?
1: फुटबॉल डिसिप्लिन।
0: पढ़ाई और खेल दोनों आप कैसे मैनेज करती हैं?
1: जैसे हमारा मॉर्निंग को जो ट्रेनिंग होता है वो 5:30 को स्टार्ट होता है, तो वो 1 घंटा या 2 घंटा तक, अभी जैसे हमारा इवेंट आ रहा है, टूर्नामेंट आ रहा है, तो वो 2 घंटा तक होता है। तो उसके बाद स्कूल जाना होता है, हम लोग 9 बजे तक पहुँच जाते हैं, प्रिंसिपल को पता है हमारे। तो उसके बाद स्कूल ख़त्म होने के बाद 3:30 को ट्रेनिंग वापस रहता है, तो उसके बाद फिर हम लोग को ट्रेनिंग ज्वाइन करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग का 5:30 ख़त्म हो जाता है, टाइमिंग ये है। तो उसके बाद हम लोग 7:00 को हम लोग डिनर करने जाते हैं। उसके बाद हम लोग का पास जो फ्री टाइम रहता है, उसमें हम लोग होमवर्क, स्टडी, एग्जाम्स रहता है, तो कम ट्रेनिंग कराते हैं।
0: तो रोज आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं?
1: 1.5 आवर और या 2 घंटा।
0: सुबह शाम दोनों वक्त प्रैक्टिस करते हैं या सिर्फ एक वक्त?
1: नहीं, दोनों वक्त करते हैं, और कभी कभी हमें वेनेसडे और सैटरडे को इवनिंग को हमें ऑफ देते हैं, एक्टिव रेस्ट देते हैं, कि हम लोग कुछ और अनदर गेम खेल सके, अपना इंजॉय कर सके, और संडे को हमारा रेस्ट होता है।
0: जैसे कि आपने बताया कि आप फुटबॉल से जुड़ी हैं, तो आपको ये मोटिवेशन कैसे मिला कि आप फुटबॉल खेले, मतलब और दूसरा खेल आपने चूज नहीं किया, फुटबॉल ही चूज किया, तो ये मोटिवेशन कैसे मिला है आपको?
1: जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे लड़का लोगों को सिर्फ खेलने मिलता था, गर्ल्स को उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था, और सोसाइटी उतना सपोर्ट नहीं देता था उस जगह में, और विलेज साइड था तो ज़्यादा उतना सपोर्ट नहीं मिलता था। सिर्फ मैं देखती थी कि लड़का लोग कैसा खेलते हैं, बस एक ऑडियंस की तरह। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे एक साई है, पोडलर आना है, मतलब उसके बाद मैंने पोस्टर देखा, उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ आई, वो जा रहे थे, फिर मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी एक बार ट्राई देती हूँ, ट्रायल देती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ आई, उसके बाद ट्रायल दिया, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ यहाँ पे, और मुझे पता चला कि यहाँ बहुत अच्छा ट्रेनिंग होता है, और बहुत ये नेगेटिव भी मैंने सुने थे, पॉजिटिव भी मैंने सुने थे, तो मैंने सोचा कि एक बार जाके देखते हैं करके।
0: जैसे कि आप जानते हैं कि अभी सभी जगह, चाहे हमारे आइलैंड हो या इंडिया हो, तो सभी जगह अभी नशा मुक्त के ऊपर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो कभी आपने ऐसे कोई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है?
1: जी, मैंने किया है। हम लोग का साई में कुछ मतलब ऑफिसर्स वगैरह आए थे, जिसने हमें बताया नशा मुक्त के बारे में, फ्री ड्रग्स इंडिया वाला, तो हमने ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। और हम लोग का स्कूल में, जैसे मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हूँ, तो वहाँ पे भी कुछ ऑफिसर्स ने आके इनके बारे में, मतलब फ्री ड्रग्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था, कि हमें, हमारा जो यूथ है जो हम लोग का इंडिया को डेवलप करेगा आगे जाके, और हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए जो मेन है, उन लोग को नशा मुक्त का मतलब ये स्पीच देना, मतलब समझना चाहिए, तो वो सब के बारे में हमने पढ़ा था और बताया गया था हमें। और जैसे हम लोग सोशल मीडिया से ज्वाइन है, तो उसमें भी हम लोग को कुछ कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि एडिक्शन से, मतलब ये ड्रग्स एडिक्शन से बचना है करके।
0: जी, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा हमें, धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए हमें।
1: जी नमस्कार, मेरा नाम मनीष तिवारी है जी। मैं और मैं यहाँ पे SISTC श्री विजयपुरम में रोइंग कोच हूँ।
0: तो आप कहाँ के रहने वाले हैं?
1: मैं लखनऊ यूपी का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ फरवरी 2022 यहाँ पोस्टेड हूँ। समथिंग 4 साल मुझे पूरे हो गए हैं और 5वां साल चल रहा है मुझे। नेक्स्ट ईयर अगर 6 महीने बाद मुझे 5 साल हो जाएंगे यहाँ पे अंडमान में।
0: जैसे कि आपने बताया कि आपको यहाँ पर 4 साल हो गए हैं, तो यहाँ पे क्या आपको सबसे अच्छा लगा आज तक?

0: यहाँ का एनवायरनमेंट है, यहाँ के लोग हैं, मिलनसार हैं और मदद जल्दी करते हैं। कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी को, तो माहौल यहाँ पे काफ़ी अच्छा है।
1: जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में, इस पे आपकी क्या राय है?
0: नशा मुक्त भारत अभियान की जो हमारी राय है, तो मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा, कोशिश करना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। जो हमारे आसपास लोग हैं उन्हें भी जागरूक करना चाहिए, अपने छोटे बच्चे जो टीनेजर्स हैं उन पे थोड़ा घर में हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए। स्कूल कॉलेज जा रहे हैं तो उसके दोस्त कैसे हैं, किस इन्वायरमेंट से आ रहे हैं, उनका माहौल, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है उनका, तो हमारे बच्चों को भी हम उस तरीके से बचा सकते हैं। दूसरा, हमें खेलों से भी जोड़ना चाहिए खुद को भी, चाहे हमारी कोई भी एज हो, और अपने बच्चों को भी, हमारे आसपास जो भी रह रहे हैं उनको भी, चाहे वो एक करियर के रूप में उसको चूज करें या फिर ऑप्शनल ऐसा फिटनेस के लिए आप 1 घंटा डेली अपने आप को अगर दे रहे हैं, तो जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो दिमाग भी स्वस्थ होगा। दूसरी चीज़ों की बजाय हम अपनी फिटनेस में वो टाइम देंगे, गलत संगति में नहीं जाएंगे। अगर स्पोर्ट्स में आते हैं या फिजिकल एक्टिविटी जो भी उनको पसंद है, उसमें थोड़ा फैमिली के साथ में बच्चे, पेरेंट्स भी उसमें अगर ज्वाइन करते हैं, अपने बच्चों को टाइम देते हैं, तो बेहतर।
1: तो चलिए, आपने हमारे साथ अपना नज़रिया साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: साई से जुड़ी एक और महिला खिलाड़ी हमारे बीच मौजूद हैं, आइए चलते करते हैं उनसे बात। सबसे पहले हमें अपना नाम बता दीजिए।
1: मेरा नाम स्नेहा टोपो है।
0: तो आप क्या करती हैं, कौन सा खेल खेलती हैं?
1: मैं यहाँ साई में रहती हूँ और मैं रोइंग प्लेयर हूँ।
0: और कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं आप?
1: हाल ही में मैंने 12th कंप्लीट कर चुके हैं।
0: फिर अभी आप क्या कर रही हैं?
1: अब मैं बाहर पढ़ाई कर रही हूँ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में।
0: तो अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई और जो खेल है आपका, आप उसे कैसे बैलेंस कर?
1: वो बस एग्ज़ाम के लिए जाना रहता है, तो हमारे यहाँ सुबह शाम हम ट्रेनिंग करते हैं और एग्ज़ाम के टाइम पढ़ाई करके वहाँ एग्ज़ाम देने जाते हैं।
0: जो रोइंग जो ये खेल है, इसमें किस तरह की ट्रेनिंग आपके लिए होती है?
1: हमारे फिज़िकल ट्रेनिंग, जैसे हम सुबह उठते हैं कि हम 4:30 बजे ट्रेनिंग जाते हैं और फिर हमारी फ़िज़िकल ट्रेनिंग वगैरह होती है और उसके बाद बोटिंग हम करते हैं।
0: कितने सालों से आप ये खेल खेल रही हैं?
1: मैं 4 साल हो गए यहाँ, 2022 में आई थी मैं और आज 2026 चल रहा है, तो 4 साल हो गए हैं यहाँ के।
0: इन 4 सालों में आपने कितने टूर्नामेंट में भाग लिया है?
1: मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट में भाग लिया है, पर अब मेरे पास 5 मेडल्स हैं नेशनल्स के।
0: जी, तो जैसे कि आप इतने साल से खेल रही हैं, काफ़ी फिट हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, तो जैसे कि हमारे भारत में अभी नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
1: मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि मैं अपने आसपास देखती हूँ कि बहुत सारे लोग नशे में बहुत डूबे हुए, अपने आप को भूल चुके हैं। मैं यही कहना चाहूँगी जो हमारे आगे वाले जो जनरेशन आने वाले हैं या स्पोर्ट्स करेंगे, वो नशा से बहुत ही दूर रहे ना। ये नशा ही करके हमारे अपने ही लाइफ को हम बर्बाद करते हैं। मैं आगे वाली जनरेशन को यही कहूँगी कि नशे से दूर रहे, भले और ही कुछ अच्छी चीज़ें कर लीजिए, बट नशे से दूर रहे।
0: कि विचार जानकर हमें काफ़ी अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं इससे कुछ सुने, अपने आप को फिटनेस की ओर मोड़ें और नशे वगैरह से थोड़ा दूर रहें। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद
1: जी। थैंक यू।

0: तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हमारे जो युवा वर्ग है वो क्या विचार रखते हैं, और उनका विचार सुनकर हमें ये लगा कि हमारा भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। चलिए हम सभी मिलकर एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज का निर्माण करें। और आज के जनता जंक्शन कार्यक्रम में मैं हेमलता अपनी साथी दीपिका और रचनापति के साथ लेना चाहूंगी आपसे इजाजत।
1: नमस्कार।

अभी आप स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित नशा मुक्ति विषय पर विशेष कार्यक्रम जनता जंक्शन सुन रहे थे। प्रस्तुति सहयोग रहा हेमलता, दीपिका और रचनावती का, तथा इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थीं जयशीला।

0: अभी आप सलमा आगा की आवाज़ में चंद गज़लों का लुत्फ ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। श्रोताओं अब लीजिए सुनिए तेलुगु कार्यक्रम।
1: మీడియం వే 438.6 మీటర్లు అనగా 684 కిలోహెర్ట్స్ పై ఇది ఆకాశవాణి శ్రీ విజయపురం కేంద్రం.

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 meter അഥവാ 684 kHz-ൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

0: अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और ये 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है, क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। इस दौरान सामूहिक वंदे मातरम गायन, तिरंगा रैलियां, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं

0: केंद्रित की जाएंगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृहमंत्री ने आज गोरीमेदु स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बम्पर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश की जा रही है। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चियनशी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. The campaign, which began in 2022 as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, has since evolved into one of the country's largest public participation movements. In Delhi, as part of the campaign, Lok Sabha BJP MP Basuri Swaraj paid floral tributes at the memorial of Pandit Madan Mohan Malviya in Malviya Nagar, followed by Tiranga Yatra from Pilanji village to Greater Kailash. Speaking to the media, Ms. Swaraj said the BJP has launched a week-long campaign starting today, during which party office bearers and workers would visit the memorials of national heroes and martyrs. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra

अभी आप मेरी हसन की आवाज़ में ये गज़ल सुन रहे थे, और अब लीजिए सुनिए कमलिनी मल्होत्रा को।

अभी आप सुन रहे थे कमलिनी मल्होत्रा को। सुगम संगीत के कार्यक्रम के तहत आज फनकार थे मेहदी हसन और कमलिनी मल्होत्रा। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर संसार।

सभी प्यारी बहनों को आपकी सखी आपकी दोस्त रीमा अरोड़ा का प्यार भरा नमस्कार और आज के घर संसार के अंक में अभिवादन। बहनों आइए आज के अंक को शुरू करते हैं एक सुविचार के साथ जो कहता है कि जीवन में असफलता आपको अपनी गलती सुधारने और वापस दोगुनी ताकत से सफल होने के लिए प्रेरित करती है। और बहनों अगर हम असफलता से हार ना मानकर डटे रहें तो जीवन में सफलता मिलती ज़रूर है ना। तो चलिए इस सफलता भरे सुविचार के साथ ही अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं और एक सकारात्मक सा गीत सुनते हैं।

0: बहनों, इस मधुर गीत के बाद आइए आज मिलकर एक वार्ता सुनते हैं, जहां हमारी बहन वी एस हेमा हमें खुशहाल परिवार की मजबूत नींव एक महिला के पहलू से अपने विचार व्यक्त करेंगी। तो आइए उनके विचारों को जानते हैं।
1: नारी केवल एक रिश्ता नहीं, जीवन का सुंदर सार है। उसके प्रेम और त्याग से ही महकता हर परिवार है। माँ बनकर ममता लुटाती, बेटी बन मुस्कान सजाती, बहन बनकर साथ निभाती, पत्नी बन हर दुख बांटती। उसके सहज की ऊंची उड़ान, हर मुश्किल में बनती पहचान, धैर्य विश्वास और संस्कार, यही है उसके सच्चे श्रृंगार। घर की पहली पाठशाला, नारी ही उसका आधार। उसकी सीख और अच्छे संस्कार बनाते उज्जवल हर परिवार। सम्मान मिले, अवसर मिले, सपनों को भी मिले उड़ान। जब सशक्त होगी हर नारी, तब सशक्त होगा हिंदुस्तान। नमस्कार बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूँ जो हर घर, हर परिवार और हर दिल से जुड़ा हुआ है। महिला, खुशहाल परिवार की मजबूत नींव। शुरुआत एक छोटे से सवाल से करते हैं। जरा अपने घर के बारे में सोचिए। सुबह सबसे पहले कौन उठता है? बच्चों को स्कूल के लिए कौन तैयार करता है? सबकी पसंद नापसंद किसे याद रहती है? और जब घर में किसी का मूड खराब हो तो सबसे पहले उसे कौन समझाता है? मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा माँ, बहन या घर की कोई महिला। चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। जहाँ भी आप हैं, बस 2 सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए और उस महिला का चेहरा याद कीजिए जिसने आज सुबह आपके लिए सबसे पहला काम किया। शायद उसने आपके लिए चाय बनाई होगी, आपका टिफिन तैयार किया होगा, आपको समय पर उठाया होगा, या केवल मुस्कुराकर आपका दिन अच्छा बना दिया होगा। हम अक्सर इन छोटी छोटी बातों को इतना सामान्य मान लेते हैं कि उनका महत्व महसूस ही नहीं करते।

लेकिन अब एक मजेदार सवाल, घर में टीवी का रिमोट खो जाए तो सबसे पहले किसे बुलाया जाता है? मम्मी, मेरा रिमोट नहीं मिल रहा। मम्मी, मेरी चाबी कहाँ है? मम्मी, मेरा चार्जर देखा क्या? ऐसा लगता है जैसे घर की महिलाएं कोई लाइव गूगल सर्च इंजन हो, जिसके पास हर चीज का जवाब मौजूद हो। लेकिन सच कहें तो यह केवल मजाक नहीं है, यह उस जिम्मेदारी का प्रमाण है जो एक महिला हर दिन बिना किसी शिकायत के निभाती है। बहनों, एक महिला केवल परिवार के सदस्यों की देखभाल नहीं करती, बल्कि वह परिवार की भावनाओं को भी संभालती है। जब कोई दुखी होता है तो वह उसका सहारा बनती है, जब कोई असफल होता है तो वह उसे हिम्मत देती है, और जब कोई सफल होता है तो सबसे ज्यादा खुशी भी वही मनाती है। कहते हैं, ईंट और सीमेंट से मकान बनता है, लेकिन प्रेम, त्याग और संस्कार से घर बनता है। और इन संस्कारों को संजोने में महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन आज का समय पहले जैसा नहीं है। आज तकनीक ने जीवन आसान बनाया है, लेकिन रिश्तों को थोड़ा मुश्किल सा बना दिया है। जरा सोचिए, एक समय था जब पूरा परिवार शाम को साथ बैठकर बातें करता था। आज क्या होता है? पापा मोबाइल पर, मम्मी मोबाइल पर, बच्चे मोबाइल पर, और कभी-कभी तो दादा दादी भी मोबाइल पर। एक ही कमरे में चार लोग बैठे होते हैं, लेकिन बातचीत व्हाट्सएप पर भी नहीं होती। तकनीक हमारी दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर मोबाइल अपनों से ज्यादा समय लेने लगे तो हमें रुक कर सोचना चाहिए। अगर दिन में केवल 20 मिनट भी पूरा परिवार बिना मोबाइल के साथ बैठ जाए तो कई गलतफहमियां अपने आप दूर हो सकती है। ऐसे समय में परिवार को जोड़कर रखने का प्रयास अक्सर घर की महिलाएं ही करती है। वह कहती है, चलो आज सब बैठकर खाना खाते हैं, चलो थोड़ी देर बातें करते हैं, चलो दादी की कहानी सुनते हैं। यानी परिवार की भावनात्मक डोर को मजबूत बनाए रखने का काम अक्सर वही करती है। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी अपनी माँ से पूछा है, माँ आप कैसी हैं? या अपनी बहन से पूछा है, तुम्हारे सपने क्या हैं? हम अक्सर महिलाओं से बहुत कुछ उम्मीद करते हैं, लेकिन कभी-कभी उनकी भावनाओं को समझना भूल जाते हैं। महिलाएं मजबूत होती है, लेकिन वे भी इंसान हैं। उन्हें भी थकान होती है, उन्हें भी दुख होता है, उन्हें भी किसी के सहारे की जरूरत होती है। सम्मान केवल बड़े अवसरों पर नहीं दिखता। कभी एक गिलास पानी देना, कभी रसोई में 5 मिनट मदद कर देना, कभी बिना कहे उनका कोई छोटा सा काम कर देना, यही छोटे छोटे काम सबसे बड़ा सम्मान बन जाते हैं। एक सुंदर पंक्ति है, औरत को सिर्फ सम्मान नहीं, समझ भी चाहिए, क्योंकि कई बार शब्दों से ज्यादा संवेदनाएं सहारा देती है। बहनों, एक समय था जब महिलाओं की पहचान केवल घर तक सीमित समझी जाती थी, लेकिन आज की महिला घर भी संभाल रही है और देश भी। वह डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, वैज्ञानिक है, सैनिक है, शिक्षक है, उद्यमी है। वह चंद्रयान तक पहुंच चुकी है और साथ ही अपने बच्चों का होमवर्क भी देख रही है, ऑनलाइन मीटिंग कर रही है, बुजुर्गों की देखभाल भी कर रही है और अपने सपनों को भी पूरा करने का प्रयास कर रही है। सचमुच महिलाओं की ऊर्जा और क्षमता को शब्दों में बांधना आसान नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा था, स्त्री को अबला कहना उसका अपमान है, और यह बात आज पहले से कहीं अधिक सच साबित हो रही है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं को मजबूत बनाना नहीं है, इसका अर्थ है उन्हें अवसर देना, उनके निर्णयों का सम्मान करना, उनके सपनों को उड़ान देना। क्योंकि एक खुशहाल परिवार वही है जहाँ महिला केवल दूसरों के सपनों को पूरा करने वाली ना हो, बल्कि उसके अपने

0: लक्षणों को भी महत्व मिले। और हमें अपनी बेटियों को यह विश्वास देना है कि वे हर ऊंचाई तक पहुंच सकती है, और अपने बेटों को यह संस्कार देना है कि सम्मान केवल शब्दों से नहीं व्यवहार से दिखाई देता है। बहनों, अब मैं एक छोटा सा फैमिली टेस्ट लेना चाहती हूँ। अगर घर में चाय बनानी हो, कौन बनाएगा? अगर बर्तन धोने हो, कौन करेगा? अगर बच्चों का प्रोजेक्ट बनाना हो, कौन करेगा? अगर मेहमान आ जाए तो कौन संभालेगा? अगर आपके हर जवाब में केवल मम्मी आ रही है, तो शायद हमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। घर एक टीम है, और किसी भी टीम की सफलता तब होती है जब सभी खिलाड़ी अपना योगदान दें। आज हमें अपने बेटों को यह सिखाने की ज़रूरत है कि घर के काम केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है। जब जिम्मेदारियां बांटी जाती है, तब रिश्ते मजबूत होते हैं। जब सम्मान व्यवहार में दिखाई देता है, तब परिवार खुशहाल बनता है। चलिए आज यहीं एक छोटा सा संकल्प लेते हैं। आज से हम घर के किसी एक काम में रोज सहयोग करेंगे। विश्वास मानिए, यह छोटा सा बदलाव पूरे परिवार की खुशियों को कई गुना बढ़ा सकता है। घर की रौनक घर की शान होती है, माँ की ममता उसकी पहचान होती है। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, वही घर सचमुच स्वर्ग समान होता है। बहनों, अपनी वार्ता को समाप्त करने के पहले मैं सिर्फ महिलाओं से ही नहीं, बल्कि आप सबों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आज घर पर सिर्फ चार शब्द कहने का मौका मिले, तो आप क्या कहेंगे? धन्यवाद माँ, मुझे आप पर गर्व है, या आज आप थोड़ा आराम कर लीजिए। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे शब्द किसी महिला के पूरे दिन की थकान मिटा सकते हैं। आज ही अपनी माँ को एक धन्यवाद कहिए, अपनी पत्नी से कहिए आपकी मेहनत की मैं कद्र करता हूँ, अपनी बहन के सपनों को सुनिए, अपनी बेटी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। विश्वास मानिए, इन छोटे छोटे शब्दों का असर बहुत बड़ा होता है। याद रखिए, एक महिला को सशक्त बनाना केवल एक व्यक्ति को सशक्त बनाना नहीं है, बल्कि एक पूरे परिवार, एक पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाना है। अंत में कुछ पंक्तियाँ। वो खुद धूप में जलती है, तब कहीं घर में उजाला होता है। उसकी मुस्कान से ही परिवार का हर कोना खुशहाल होता है। नारी केवल एक रिश्ता नहीं, जीवन का आधार है। उसका सम्मान ही परिवार की सबसे बड़ी ताकत और संस्कार है। इसी सकारात्मक संदेश के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।
1: बहनों, हमें आशा है कि हमारी बहन वी एस हेमा के द्वारा जो वार्ता आपके सामने प्रस्तुत की गई, वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, है ना? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी बातों को लेकर। बहनों, हमने कई बार अंग प्रत्यारोपण के बारे में सुना है कि किस तरह किसी एक दान से किसी दूसरे को जीवन प्राप्त हो सकता है। आधुनिक चिकित्सा की मदद से गुर्दे, हृदय, यकृत, फेफड़े और कई खराब हुए अंगों को सफलतापूर्वक बदला जा सकता है, लेकिन कई मरीजों को समय पर उपयुक्त दाता ना मिल पाने के कारण उपचार नहीं मिल पाता। और उपयुक्त दाता ना मिल पाने का कारण क्या है, आप जानती हैं? इसका कारण है अंग दान के प्रति लोगों में जागरूकता का कम होना। और इसी व्यथा को दूर करने के लिए हर वर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। बहनों, एक मृत अंगदाता महत्वपूर्ण अंगों का दान करके 8 लोगों की जान बचा सकता है, और उसके जो ऊतक हैं उनके दान से कई और लोगों के जीवन में सुधार लाया जा सकता है। और इसी के विपरीत, अगर एक स्वस्थ

व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को एक गुर्दा या यकृत का एक हिस्सा दान कर दे तो उससे भी किसी का जीवन बच सकता है। और दानकर्ता जो है आंशिक दान के बाद भी दोनों अंग सामान्य रूप से काम कर सकते हैं। भारत में अंगदान मानव अंग एवं उतक प्रत्यारोपण अधिनियम यानी कि THOTA 1994 द्वारा नियंत्रित होता है, जिसे नियमों को मजबूत करने और अवैध अंग व्यापार को रोकने के लिए 2011 में संशोधित किया गया था। अंगदान की प्रक्रिया बहुत ही सरल है, जिसमें आप NOTTO यानी कि राष्ट्रीय अंग एवं उतक प्रत्यारोपण संगठन के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर सकते हैं। बहनों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ना सिर्फ लोगों को जागरूक करना है, बल्कि अंगदान के लिए प्रोत्साहित करना है और साथ ही अंगदाताओं और उनके परिवार को श्रद्धांजलि देना भी है। तो चलिए इस महादान का हिस्सा बने, अंगदान में सहायक बने।

बहनों, 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है, जो कि आज़ादी, बलिदान, राष्ट्रीय गौरव की भावना का प्रतीक है। यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को सम्मानित करने और 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में भारत की यात्रा पर विचार करने का अवसर है। बहनों, जब 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ, तब हमारे पास कोई आधिकारिक राष्ट्रगान नहीं था। उसे 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया और उसे लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। और आज राष्ट्रगान के साथ साथ वंदे मातरम स्वतंत्रता सेनानियों का एक नारा बनने के साथ ही मैं मातृभूमि के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन गया है। यह हमारी शक्ति की पहचान है, एक ऐसी शक्ति जिसमें महिलाओं का भी नाम है। आज हमारा देश हर दिशा में अग्रसर है और नारी शक्ति को, ज्ञान की शक्ति को पहचान चुका है। हमारे यहाँ अरुणा आसफ अली, सावित्री बाई फूले, रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू और ऐसे कई अनगिनत महिलाओं के नाम शुमार हैं जिन्होंने इस देश की उन्नति के लिए कार्य किए। और आज भी कई महिलाओं के नाम इसमें शुमार है जो कार्य कर रही हैं। बहनों, हर घर तिरंगा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है। इसके तहत नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वर्ष 2026 में यह अभियान 9 से 17 अगस्त तक मनाया जा रहा है, जिसमें वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न भी शामिल है। चलिए आपको राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ खास बातें बताई जाए। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा विशेष रूप से खादी कपड़े का ही बना होना चाहिए। और एक बात कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज को नीचे से ऊपर खींचकर फहराते हैं, जिसे हम ध्वजारोहण कहते हैं। और दूसरी ओर 26 जनवरी को राष्ट्रपति राजपथ पर पहले से बंधे हुए झंडे की गांठ खोलकर उसे फहराते हैं, जिसे ध्वज फहराना कहते हैं। तो चलिए इस ध्वजारोहण के साथ अपने विचारों, अपनी कला को भी नई उड़ान दे और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दे।

0: बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम स्थित फ्लैग प्वाइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने डॉ बीआर आम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित राजकीय समारोह वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया। उनतालीस के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब नेताजी
2: इट इज इंडेड टू लॉन्च दिस कैंपेन टुडे ऑन ऑगस्ट क्रांति दिवस एस वी कमेमोरेट द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। मिलियंस ऑफ इंडियंस रेस्पॉन्डेड टू दिस कॉल एंड रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश विद अनवावरिंग रिजॉल्व ऑफ डू ऑर डाई ऑन दिस डे। It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
1: उपराष्ट्रपति कृष्णन दो दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर हैं। इधर दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
3: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है जहाँ पर हम हमारे राष्ट्र के नायक जितने भी हमारे शहीद लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और भी कार्यक्रम करेंगे।
1: प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
4: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनी हुई दंड संहिता 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
1: श्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
4: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस संख्या में 5,000 से कम हो मगर देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा आंतरिक सम्मान की रक्षा का काम

राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने की इस उपलब्धि के साथ ही पुदुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्षा

0: करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गतिरोध जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है।
1: सरकार की 4 सदस्यीय मंत्री स्तरीय टीम छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रही है। इधर जेकेएलएम विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री से छात्रों के सीधे संवाद की मांग की है। वहीं राज्य के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने सीबीआई और ईडी जांच, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने तथा पुलिस कांस्टेबल शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 युवाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से चारों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है ताकि राज्य में धान की बम्पर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है। 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जालंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन तथा लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आसपास के क्षेत्रों के 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को भी प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ताइवान की कुछ एयरलाइंस ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति आज सवेरे तक लगभग 162 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई थी। इससे तेज बारिश हो रही है जिससे भीषण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और इसके चाचियांग प्रांत और पड़ोसी फुचियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है। अधिकारियों ने चाचियांग में भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। शंघाई के हांगशाओ और पुडोंग हवाई अड्डों ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानों को रद्द कर दिया है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के

0: अणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
1: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बस्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टेयर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेन शी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता, जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है और अब चलते चलते आपको बता दें मौसम का हाल। मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विपुल के अधिकांश स्थानों में वर्षा हुई। जन सेवाओं को कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के अधिकतर क्षेत्रों में वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मछुआरों को मौसम संबंधी विशेष चेतावनी में बताया जाता है कि समुद्र में वायु की गति लगभग 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलेंगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। ऐसे में समुद्र अशांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में न जाएं। ये था मौसम का हाल। इस समय 2:32 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम के 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 MHz FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती FM 3 विजयपुरम
1: 100.9 आपका हम सफर।

0: आप सुन रहे थे अलीशा चिनॉय की आवाज में करम फिल्म का ये गाना। कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

संदेश शांडिल्य और साधना सरगम की आवाजों में आइए सुनते हैं सूचना था फिल्म का गाना। सुब्रत सिन्हा के बोल हैं, संदेश शांडिल्य का संगीत।

और अब कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं फिल्म शब्द का गीत कुमार सानू और सुनिधि चौहान की आवाज में। इरशाद कामिल के बोल हैं, विशाल शेखर का संगीत।

आप हैं 100.9 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती श्री विजयपुरम के साथ। दोपहर के 3 बजे हैं, लीजिए सुनिए एल्बम टाइम्स।

0: फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: और अब बॉम्बे विकिंग्स की आवाज़ में आइए सुनते हैं ये एल्बम की।
1: Coming with the new funk. Call it what you want, babe. I call it the funk. The G-funk era. Yeah, check it out.

कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है। कभी कोई धुन हमें किसी खास शख्स की याद दिलाती है, कभी कोई बोल हमारे दिल की अनकही बात कह जाते हैं, और कभी कोई गीत यूं ही चेहरे पर मुस्कान बिखेर जाता है। यूं ही गाते रहो, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, मैं हूं देवकी आपके साथ। कहते हैं मोहब्बत में जब किसी का ख्याल दिल में बस जाए तो हवाओं में भी उसी की खुशबू महसूस होने लगती है। हर रास्ता उसी की ओर जाता हुआ सा लगता है और हर धुन उसी की कहानी सुनाती है।

कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें समझने में वक्त लगता है, पता ही नहीं चलता कि कब कोई अजनबी हमारे लिए इतना खास बन गया, कब उसकी मुस्कान हमारी खुशी और कब उसकी उदासी हमारी बेचैनी बन गई। पता ही नहीं चलता कि आखिर ये दिल किसी के इतने करीब कैसे हुआ।

मोहब्बत हमेशा शब्दों में बयां नहीं होती, कई बार आंखें तो कह जाती हैं जो होंठ नहीं कह पाते, और दो लोगों के बीच कुछ ऐसी बातें रह जाती हैं जो कही तो नहीं जाती मगर दिल उन्हें बखूबी समझ लेता है।

और जब अनकही बातें धीरे धीरे एहसासों में बदलने लगती, तो जब किसी की एक झलक दिल को खुश कर दे, जब किसी का इंतज़ार अच्छा लगने लगे, तो शायद यही प्यार की शुरुआत होती है। प्यार हमेशा अचानक नहीं होता, धीरे धीरे, हौले हौले से दिल में उतर जाता है।

कुछ रिश्ते इतने प्यारे होते हैं कि दिल बस यही चाहता है ये साथ यूं ही बना रहे, ये मुस्कान यूं ही कायम रहे और इस रिश्ते को किसी की नज़र ना लगे।

कभी कभी किसी रिश्ते को किसी बड़े वादे की ज़रूरत नहीं होती, बस एक प्यारा सा साथ ही काफ़ी होता है। बस इसे खूबसूरत एहसास के साथ सुनिए ये प्यारा सा गीत।

100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे साथ स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे है। अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो श्रोताओं, सभा की शुरुआत में सबसे पहले सुनते हैं निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनलामिन ये रखरे हमांग इंगजे तका इनगम मीटिंग में 438.6 मीटर हेक इंगम 684 किलोहर्ट्स लिखते हैं आंग इन रमांगलगी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अनगी निकबारी प्रोग्राम दांग

0: Dikutnya, Jackie Liu temehul o asara ki andai ngam mana a hangi tahet tin ke ke. Asa ngam terahai yan berita ke terita ki, telek tan sin ngak hangga tel ngak hang tengamu, hek in hurich, hang rong ita kasada, ita fan kairo tela harap. Salam yan ngay.
1: श्रोताओं, अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की सातवीं कड़ी।

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नॉगिन नरिश। सोच रहे होगे कि ये टॉपिक है क्या आखिर। सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम, खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार जाने बॉडी और माइंड के लिए कुछ पौष्टिक भोजन के बारे में। अच्छा, अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि बॉडी और माइंड को हेल्थी रखने के लिए किन किन पौष्टिक भोजन का सेवन करते रहना चाहिए, तो फिर आपका जवाब क्या हो सकता है? शायद इस सवाल के जवाब में आप एक नहीं बल्कि कई भोजन का नाम लें। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार कुछ ऐसे भोजन हैं जो हमेशा ही बॉडी और माइंड के लिए बेहतरीन माना जाता है। अगर आप पौष्टिक भोजन के बारे में नहीं जानते हैं तो इस प्रोग्राम में तो मैं चेतन आपको कई आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से कुछ इन्फॉर्मेशन सोर्स करके आपके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है, तो ध्यान से सुनिए। आयुर्वेद में अगर सबसे अच्छा और पौष्टिक भोजन माना जाता है तो उनमें से एक है घी, क्लैरिफाइड बटर। इसका सेवन करना बहुत अच्छा होता है। प्राचीन काल से लेकर मौजूदा समय में घी को एक आयुर्वेदिक आहार भी माना जाता है। ऐसे में डॉक्टर्स कहते हैं कि बॉडी और माइंड के लिए घी का सेवन करने की सलाह देते हैं। हालांकि उचित मात्रा में लेना भी बहुत जरूरी है। वैसे तो कई ड्राई फ्रूट्स हैं जो पौष्टिक आहार में शामिल है, लेकिन बॉडी और माइंड के लिए सबसे अच्छा ड्राई फ्रूट्स में से एक खजूर को भी माना जाता है। ऐसे में आप नियमित तौर पर खजूर को भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसे दूध के साथ भी सेवन कर सकते हैं। खजूर के साथ साथ अंजीर को भी आहार में शामिल कर सकते हैं। खजूर और अंजीर के अलावा भी ऐसे कई फ्रूट्स हैं जिन्हें आप आहार में शामिल कर सकते हैं। डॉक्टर्स के अनुसार बॉडी और माइंड के लिए पौष्टिक भोजन में अंगूर के साथ साथ कटहल और केले को भी शामिल कर सकते हैं। ये तीनों फल आयुर्वेद की नज़र से सेहत के लिए हमेशा से बेहतरीन आहार माने जाते हैं। इसके अलावा दूध को भी आप आहार में शामिल कर सकते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट एंड डॉक्टर्स घी, खजूर, अंजीर, अंगूर, कटहल आदि चीज़ों के अलावा कुछ और चीज़ों को भोजन में शामिल करने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि सूप के साथ काला चना, गुड़, चावल और आंवला आदि चीज़ों को भोजन में शामिल करते रहना चाहिए। पौष्टिक भोजन शामिल करने के साथ साथ एक्सरसाइज और मधुर

संगीत सुनने की भी सलाह देते हैं। अगर आपको ये लम्हे प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप ध्यान से सुनिए और अपने परिवारजनों के साथ भी शेयर कीजिए। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक बेहतर डाइट लें, तभी हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, साथ ही कई बीमारियों के खतरे से दूर रह सकते हैं। हम जो भी खाते हैं उसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। यही वजह है कि हमें हमेशा पौष्टिक आहार का ही सेवन करना चाहिए। अच्छी डाइट के मदद से हमारा शरीर कोई भी काम करने को तैयार हो जाता है। अक्सर ज़्यादातर लोग होते हैं जो अपनी डाइट पर कंट्रोल नहीं कर पाते और जिसकी वजह से उन्हें तमाम बीमारियों की चपेट में आना पड़ता है। लेकिन जो लोग अपनी डाइट को बेहतर बनाने के साथ उस पर कंट्रोल रखते हैं, वो लोग ज़्यादा लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हम आपको इस प्रोग्राम में बताते हैं कि ऐसा कौन से सदाबहार पौष्टिक आहार है जिसका सेवन कर आप लंबे समय तक फिट रह सकते हैं।

दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। दूध एक ऐसा विकल्प है जिसको आप बचपन से पीते आ रहे हैं, बड़े होने के बाद भी आपको फिट रखने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। दूध एक तरह से संपूर्ण आहार है जिसमें मिनरल, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन की काफ़ी मात्रा होती है। आप रोज़ाना नियमित रूप से अगर दूध पीते हैं तो इससे आप फिट भी रह सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रूट्स अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए फल बहुत ही फायदेमंद माना जाते हैं। आपको नियमित रूप से फलों का सेवन करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही फल पर निर्भर रहें। आप बदलते मौसम के साथ मौसमी फल का सेवन ज़रूर करें। आपको हर प्रकार के फल खाना चाहिए। सभी फलों में अपने अपने गुण होते हैं जो आपको कई बीमारियों से दूर रखने का काम करते हैं। फलों में केला एक ऐसा फल माना जाता है जिसे आप रोज़ाना नियमित रूप से खा सकते हैं। आप चाहे तो केले को दूध के साथ भी खा सकते हैं। यह आपको हेल्दी रखने के लिए काफ़ी उचित है। ताज़ी सब्जियाँ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ यानी ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने में बहुत अहम होती है। नियमित रूप से सब्जियों का सेवन करने से हमें हर प्रकार का पोषण मिलता है और हमारी सारी बीमारियाँ दूर होती हैं। हरी सब्जियाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद मानी जाती है। आपको बता दें कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ बढ़ते वजन को कम करती है, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, स्किन में ग्लो लाते हैं, कैंसर आदि से लड़ने में सहायक होती है। रोज़ाना आपको एक मुट्ठी भर नट्स खाने से आप दिन भर तरोताज़ा और एक्टिव महसूस करेंगे। नट्स में ख़ासतौर पर बादाम और अखरोट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बादाम खाने से दिमाग तेज़ होता है और खून भी बढ़ता है। साथ ही बादाम के अंदर अच्छा कोलेस्ट्रॉल और अच्छा वसा पाया जाता है जो शरीर के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। इसमें रेशा होता है जो शरीर से वसा को जलाकर उसे स्वस्थ और एक्टिव बनाता है। तो दोस्तों, ये थी न्यूट्रिशियस फूड के बारे में। दैट वॉज द टॉपिक नॉकिंग नरिश इन लम्हे प्रोग्राम। एंड दिस इज योर आरजे चेतन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल गेट बैक टू यू इन अ नेक्स्ट प्रोग्राम। टिल देन बाय। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:40 हुए हैं। अब सुनते हैं आज व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। शाम 5 तमिल कार्यक्रम होगा। बंगला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। शाम 6 आप सुन सकते हैं व्हाट्सएप पर आधारित महिलाओं की फरमाइश पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संगीत संगिनी। 6:30 का समय रहेगा धरती के गीत कार्यक्रम का, जिसमें आप सुनेंगे संबलपुरी लोकगीत। 6:45 पर देशगान। 7:05 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाओं से अवगत कराया जाएगा शाम 7:15 पर। आज संध्या 7:20 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया के तहत फिल्मी गीत। युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी का समय रहेगा 7:30। रात 8 आप आनंद ले सकते हैं फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। 8:30 पर रोजगार समाचार और चंद देशभक्ति गीत पेश किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के अलावा 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9 न्यूज एट नाइट, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10 रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में सात्विक मोहन का कर्नाटक शैली में गायन होगा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 आप FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत भी सुन सकते हैं, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। रात 11 मौसम की जानकारी के बाद हमारी स्थानीय सभा की समाप्ति होगी। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

श्रोताओं, अब सुनते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:25 पर, 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। 5:55 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम एग्री टिप्स, जिसमें कल जानकारी का विषय रहेगा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में सावधानी। 6:10 पर जलयानों का यात्रा कार्यक्रम, 6:15 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम इंद्रधनुष, जो केंद्रित होगा जप शीर्षक पर। रामचरितमानस गान की 326वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी 6:30 पर। 6:40 पर समाचार वार्ता, 6:45 पर वतन के गीत, मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 6:50 पर। 7:15 पर आप सुन सकते हैं फिल्मी देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश रागिनी। इसी समय FM 100.9 MHz पर आप प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत भी सुन सकते हैं, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। 7:30 पर कार्यक्रम होगा गुड मॉर्निंग अंडमान, जो मीडियम वेव और FM 100.9 MHz दोनों पर प्रसारित किया जाएगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल आप 8:30 पर सुन सकते हैं हरिहरन और घनश्याम वासवानी का गायन। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने सुहानी का समय रहेगा कल सुबह 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप पंडित जसराज का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुन पाएंगे। गीत गाता चल फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम सुन

कल दिन में 10 बजे। 11 बजे एनसीईआरटी की 1346वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। 11:30 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम में श्रेया घोषाल के गाए गीत आप सुन सकते हैं। 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम होगा। 12:30 का समय रहेगा मलयालम कार्यक्रम का। समूह गान शिक्षा का कार्यक्रम आओ हिलमिल गाएं में हम होंगे कामयाब आप सुन सकते हैं 1:10 पर। 1:30 पर आपके नाम फिल्मी पैगाम व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम पेश किया जाएगा। दोपहर 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद हमारी स्थानीय सभा की समाप्ति होगी, लेकिन हम आपसे जुड़े रहेंगे FM 100.9 MHz पर हमारे लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड के साथ। 3:30 पर बोलते नगमों का कार्यक्रम होगा, यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ। 4:30 पर रेणु विजय चौधरी और चंदन दीक्षित का जैसे कलाकारों को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुगम संगीत में। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा शाम 4:40 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम 4:45 पर। शाम 5 बजे आनंद लीजिए तमिल कार्यक्रम का और 5:30 पर बंगला कार्यक्रम। शाम 6 बजे सुनिए कार्यक्रम कृषि जगत। 6:30 पर रिमिक्स गीतों का कार्यक्रम होगा पॉप मसाला। 7:05 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा। श्रोताओं, ये थे कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:45 हुए हैं। श्रोताओं, अब समय है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम बहारों की शाम का। इस कार्यक्रम का पहला गीत हम पेश कर रहे हैं धड़कन फिल्म से। आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की, गीत रचना समीर की है और संगीत नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, अब सुनते हैं अनु मलिक के संगीत निर्देशन में तैयार समीर की लिखी रचना, आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की। इस गीत को हमने लिया है हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म से।

श्रोताओं, अब सुनते हैं इस कार्यक्रम का अंतिम गीत कुमार सानू और आशा भोसले की आवाजों में। बोल लिखे हैं मदन पाल ने और संगीत आदेश श्रीवास्तव का, और फिल्म है शिकारी।

0: श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे है। अब लीजिए सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: ஆகாஷ்வாணி ஸ்ரீ விஜயபுரம் வானொலி நிலையம் வழங்கும் தமிழமுதம் நேர்களே, இன்றைய நிகழ்ச்சியில் புஷ்பலதா வணக்கம்.

0: நேர்களே அதுவரை இசையோடு இணைந்திருங்கள். மீண்டும் நாளை மாலை 5 மணிக்கு துல்லியம் இசையறிவின் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம். வணக்கம் நேர்களே.
1: श्रोताओं, अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए बंगला कार्यक्रम।
2: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र থেকে शुरू করছি আজকের বাংলা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হচ্ছে মিডিয়াম এফ 438.6 মিটার অর্থাৎ 684 কিলোহার্টজ থেকে।

श्रोताओं, अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6 बजे हैं। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम संगीत संगिनी का।

नमस्कार दोस्तों, संगीत संगिनी कार्यक्रम में मैं मंजीत आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का है और इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं महिलाओं की फरमाइशों को। तो सखियों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने पसंद के गीत सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप संदेश जरूर भेजिए। संदेश भेजने के लिए हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर दोहरा रही हूँ, 9474234000। सखियों, संदेश भेजते समय अपना नाम और पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल जरूर लिखें। हर रविवार इसी समय यानी संध्या 6 बजे हम आपकी फरमाइशों को संजोकर पेश करेंगे आपका अपना कार्यक्रम संगीत संगनी।

तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले तेलंगाना से महेश्वरी की फरमाइश पर, आराधना फिल्म के इस गीत के साथ।

श्रोताओं, अब सुनते हैं खट्टा मीठा फिल्म का ये गीत। फरमाइश करने वाली है रंजू धाकड़ और शिवांगी धाकड़, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से।

श्रोताओं, अभी आपने सुना महाराष्ट्र से अंजलि करवा की फरमाइश पर डॉन फिल्म का गीत। अब सुनते हैं सरोजनी विश्वास जंगलीघाट से, इन्होंने फरमाइश की है साजन फिल्म के गीत की।

श्रोताओं, अब सुनते हैं इस कार्यक्रम की अंतिम पेशकश, जो हमने ली है धूम फिल्म से। इस गीत की फरमाइश की है पात्रापुर से राधा रानी ने।

इस गीत के साथ ही सखियों, मैं आपके फरमाइशी गीतों के सिलसिले को यहीं विराम देती हूँ। अगले रविवार संध्या 6 बजे हम आपके संदेशों के जरिए आपके पसंद के गीत लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप संगीत संगिनी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। आप सुनते हैं धरती के गीत कार्यक्रम के तहत संबलपुरी लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप धरती के गीत कार्यक्रम में संबलपुरी लोकगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:45 हुए हैं। आप सुनते हैं देशगान।

एक सूचना, क्या आपके जिले में कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश में हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाएं और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2 लाख रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की है? अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दें। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। ये थी सूचना।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:05 होने वाली है। अब से कुछ ही देर में आप प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम।
3: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
6: बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत।
7: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ।
5: बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी।
8: माझी पॉलिसी माझा हाथी।
5: बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक।
9: मारी पॉलिसी मारे हाथ।
5: बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर।
9: जन पॉलिसी जन कैयन।
5: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
10: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
11: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
12: आगे सैलरी?
13: हाँ।
12: नए झुमके?
13: ना, पहले बचत।
12: पहले झुमके?
13: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
12: लेकिन झुमकों का क्या?
13: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
14: RBI कहता है
11: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
15: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
16: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य।

0: www.hr.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। उस दिन स्कूल और आंगनबाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवा खिलाई जाएगी और जो बच्चे छूट जाए उन्हें मॉप अप दिवस पर दवाई खिलाई जाएगी।
3: कृमि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
2: खुले में शौच ना करें, खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोएं, अपने आसपास सफाई रखें, नाखून छोटे रखें, जूते हमेशा पहनें।
4: कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज श्री विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मत्स्य संग्रहालय सह जल जीव गृह परिसर में बिक्री केंद्र स्थापित किया जाएगा और डी ब्रेट में बीटेक कार्यक्रमों की बची हुई सीटों पर प्रवेश के लिए कल परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

सांध्य समाचारों के साथ मैं जीनत बीबी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज श्री विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने द्वीप समूह के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े गौरवशाली इतिहास को याद किया। उन्होंने कहा कि यह वही धरती है जहां स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी के लिए कठोर यातनाएं सही। श्री राधाकृष्णन ने सेलुलर जेल के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को नमन किया। उन्होंने 30 दिसंबर 1943 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था। उपराष्ट्रपति ने वंदे मातरम के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि इस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशवासियों में राष्ट्रीय भावना और एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने द्वीप समूह को भारत की विविधता और एकता का प्रतीक बताया तथा देश के विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने आज डॉ बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित तिरंगा कॉन्सर्ट ऑन वंदे मातरम में भी भाग लिया। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप में ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया जिसमें वह इमारत भी शामिल है जहां दिसंबर 1943 में अपनी ऐतिहासिक अंडमान द्वीप यात्रा के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ठहरे थे। उन्होंने चर्च, ट्रूप्स बैरक, गन पॉइंट क्षेत्र और स्मृतिका संग्रहालय का भी दौरा किया जहां उन्हें द्वीप समूह के समृद्ध इतिहास और इसके भावी विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में नागरिकों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि

महात्मा गांधी के नेतृत्व से प्रेरित होकर भारत छोड़ो का आह्वान देश के स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा लेकर आया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता के अटूट संकल्प को प्रतिबिंबित किया। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनकी संस्कृति तथा पारंपरिक ज्ञान प्रणाली का संरक्षण करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का मुख्य विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। यह प्रसूति देखभाल, जन और सामुदायिक स्वास्थ्य में जनजातीय धाय की भूमिका का उल्लेख करता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है मत्स्य और परामर्श। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मत्स्य विभाग ने द्वीप समूह के पात्र स्वयं सहायता समूहों से विभाग के मत्स्य संग्रहालय सह जल जीव गृह परिसर में बिक्री केंद्र स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस बिक्री केंद्र के माध्यम से मत्स्य उत्पादों तथा विभाग द्वारा अनुमोदित अन्य वस्तुओं की बिक्री की जाएगी। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना और संग्रहालय आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। इच्छुक एवं पात्र स्वयं सहायता समूह निर्धारित दस्तावेजों के साथ अपने संबंधित खंड विकास अधिकारी की अनुशंसा सहित आवेदन 16 अगस्त तक सहायक निदेशक मत्स्य संग्रहालय से एक्वेरियम कार्यालय में जमा कर सकते हैं। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से कृषि यांत्रिकीकरण और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार उद्यमियों और स्टार्टअप्स से आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवोन्मेषकों को परामर्श, इंक्यूबेशन तथा मार्गदर्शन सहायता प्रदान करना है। चयनित उम्मीदवारों के लिए 2 महीने का इंक्यूबेशन कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम के तहत द्वीप कृषि प्रौद्योगिकी, नारियल और मसालों का मूल्य संवर्धन, एकीकृत मत्स्य पालन, संरक्षित खेती, जैविक खेती के उत्पाद और जलवायु अनुकूल कृषि जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। इच्छुक उद्यमी और स्टार्टअप 15 अगस्त तक कैरी के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। अंडमान निकोबार एम्पोरियम सागरिका के विभागीय आउटलेट के माध्यम से विपणन सहायता प्राप्त करने के इच्छुक सभी स्थानीय पंजीकृत स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियों, एमएसएमई, कारीगरों और हस्तशिल्प उत्पादों के निर्माण में लगे व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सभी इच्छुक आवेदक स्वीकृति और अंतिम बिक्री मूल्य निर्धारण के लिए 19 अगस्त तक हस्तशिल्प उत्पादों की प्रस्तावित कीमतों, नमूनों और प्रत्येक नमूने की तस्वीरों के साथ निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र सागरिका के सभी आउटलेटों, सहायक निदेशक कार्यालय और विभाग के सभी विस्तार कार्यालयों में उपलब्ध है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीटेक कार्यक्रमों की बची हुई सीटों पर प्रवेश हेतु परामर्श कल आयोजित की जाएगी। परामर्श सुबह 9:30 बजे संस्थान के सम्मेलन कक्ष में लिया जाएगा। इसके लिए पंजीकरण सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक होगा। अभ्यर्थियों को परामर्श के दौरान अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अतिथि संकाय, अंशकालिक प्रशिक्षक और योग प्रशिक्षकों की भर्ती हेतु 13 अगस्त को साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। इसमें डेमो, थ्योरी और प्रैक्टिकल शामिल होंगे। योग्यता, साक्षात्कार, कार्यक्रम और डेमो विषय संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अकादमिक सेल से सभी कार्य दिवसों में सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज श्री विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा

0: गंगा अभियान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मत्स्य संग्रहालय सहजल जीव गृह परिसर में बिक्री केंद्र स्थापित किया जाएगा और डी ब्रेट में बीटेक कार्यक्रमों की बची हुई सीटों पर प्रवेश के लिए कल परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:16 हुए हैं। अब सुनते हैं मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। सबसे पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है, पर मछुआरों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समुद्री तटों पर हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहने तथा जिसके बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की भी संभावना है। इसलिए मछुआरों को चेतावनी दी जाती है कि वह समुद्र में आज से यानी 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक ना जाए। परसों तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनते हैं जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार MV बाराटा कल सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए रवाना होगा। इस जलयान की वापसी परसों यानी 11 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से उसी मार्ग से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। 12 तारीख को सवेरे 7 बजे MV स्ट्रीट टैलेंट श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए छूटेगा। 13 तारीख को सवेरे 7 बजे ये जलयान डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। 14 तारीख को MV रानी लक्ष्मी सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर जाएगा। इस जलयान की वापसी होगी 15 तारीख को सवेरे 7 बजे। MV भारत सीमा 15 तारीख को रात 8 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए अपनी यात्रा आरंभ करेगा। अगले दिन 16 तारीख को दोपहर 2 बजे ये जलयान डिगलीपुर से छूटेगा और उसी बंदरगाह होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। जलयान MV नालंदा मंगलवार 11 तारीख को दिन में 10 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान जाएगा। उसी रात 9 बजे ये जलयान लिटिल अंडमान से छूटकर श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। 13 तारीख को सवेरे 8 बजे MV भारत सीमा श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान जाएगा और रात 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। MV नालंदा 14 तारीख को रात 9 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए रवाना होगा। इस जलयान की वापसी अगले दिन 15 तारीख को सवेरे 9 बजे होगी। जलयान MV कालीघाट 12 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार जाएगा। अगले दिन 13 तारीख को शाम 4 बजे ये जलयान कार निकोबार से छूटेगा और उसी बंदरगाह होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। MV सेंटिनल 13 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से अपनी यात्रा आरंभ करेगा। ये जलयान लिटिल अंडमान कार निकोबार चौरा तरासा कचाल ननकौरी माकाचुआ और अफराबे होते हुए कैंबल भी जाएगा। 16 तारीख को ये जलयान कैंबलवे से छूटेगा और इन सभी बंदरगाहों से होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। यही जलयान 27 तारीख को भी श्री विजयपुरम से इन सभी बंदरगाहों से होते हुए कैंबलवे जाएगा और 30 तारीख को वापसी करेगा। MV कैंबलवे 11 तारीख को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से नानकौरी होते हुए कैंबलवे जाएगा। 13 तारीख को सवेरे 8 बजे ये जलयान कैंबलवे से छूटेगा और उसी बंदरगाह होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। इस जलयान की

यात्रा श्री विजयपुरम से ननकौरी होते हुए कैंबलवे के लिए 25 तारीख को सवेरे 9 बजे होगी। 27 तारीख को सवेरे 8 बजे ये जलयान कैंबलवे से छूटकर ननकौरी होते हुए श्री विजयपुरम आएगा। जलयान नालंदा 18 तारीख को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से ननकौरी होते हुए कैंबलवे जाएगा। 20 तारीख को सवेरे 8 बजे ये जलयान कैंबलवे से रवाना होगा और उसी मार्ग से होते हुए श्री विजयपुरम आएगा। ये था जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। अब सुनते हैं जनसूचनाएं। गैर कानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है। 112-031-922-32100, 031-922-33-077 और 031-922-32-400। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। ये थी जन सूचनाएं। श्रोताओं, अब एक आवश्यक सूचना। क्या आपके जिले में कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव स्टेशन सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटिव प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या प्रोडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। ये थी आवश्यक सूचना। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। दिल ने फिर याद किया।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम का ये पहला गीत हमने लिया है जोर फिल्म से। आवाजें कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की है, गीत रचना रविंदर की और संगीत दिया है आगोश ने।

होता है तो हमें पता चलता है कि हम स्वयं कितने मजबूत हैं। इसलिए बुरे समय से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। जीवन में परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं बदलेगी, लेकिन हम अपनी सोच और अपने प्रयासों को जरूर बदल सकते हैं। याद रखिए, समय कभी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए अच्छे समय में अहंकार मत कीजिए और कठिन समय में उम्मीद मत छोड़िए। जी दोस्तों, इसी विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स।

0: श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। अब सुनते हैं युवाणी के तहत लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो म्यूजिक लवर्स।
1: सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए।

नमस्कार दोस्तों। दोस्तों समय जीवन का वह शिक्षक है जो बिना कुछ कहे हमें बहुत कुछ सिखा देता है। जब समय अच्छा होता है तो हमें पता चलता है कि हमारे साथ कौन खड़ा है, और जब समय कठिन

0: दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए कॉल करिए इन नंबरों पर 232-540 और 232-558, और हमारा STD कोड है 031192। तो दोस्तों, लेते हैं आज का हमारा यह पहला कॉल। हेलो म्यूजिक लवर्स।
1: जी मैम, जय श्री महाकाल।
0: जी महाकाल, आपका नाम?
1: MP विदिशा से आपका नियमित श्रोता बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी
1: जी मैम, कैसे हैं आप?
0: जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: जी मैम, बहुत बढ़िया हूँ, और आपसे बातचीत हो रही है तो और भी अच्छा लग रहा है मैम।
0: जी, और आपका आज का दिन कैसा गया?
1: मैम बढ़िया गया, दिन
0: जी
1: काफी अच्छा गया।
0: तो आज का आपका दिन को और खास बनाने के लिए आज आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैं सबसे पहले उन शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने हमें इतना अच्छा रखा है, और सेना में जो जवान हमारे लिए सुरक्षा के लिए खड़े हैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, और उनके ही समर्थन में एक गीत सुनना चाहता हूँ मैम, और आपको और सभी सुनने वालों को आने वाले स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं मैम।
0: जी
1: मैम एक गाना रहेगा, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
0: जी तो चलिए सुनाते हैं आपको आपका ये मनचाहा गीत।

0: हेलो म्यूजिक लवर्स।
1: हेलो म्यूजिक लवर्स, दीदी को राधे राधे।
0: जी राधे राधे, मेरी किनसे बात हो रही है?
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: जी केसरी जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है, और आप कैसे हो?
0: जी मैं भी ठीक हूँ। और आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: बढ़िया है दीदी, बारिश हो रही है लगभग कल नाइट से, तो
0: जी
1: बढ़िया रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, बहुत आनंद आ रहा है।
0: जी तो केसरी जी, आज आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: वो है आप जो मेरे मीत ना होते, होठों पे मेरे गीत ना होते,
0: जी
1: और आप सुनेंगे, और राम बाबू शर्मा जी, गजराज लोधी जी, मांगीलाल चंदेल जी, भगवान सिंह परमार जी, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, अविनाश तेली जी, आशुतोष जी, संगीता जी, और राजू यादव जी सुनेंगे, और हेलो फरमाश रेडियो एकता ग्रुप के सभी मेम्बर।
0: जी तो चलिए केसरी जी, सुनाते हैं आपको आपका ये मनचाहा गीत।

0: हेलो म्यूजिक लवर्स,
1: हेलो,
0: हेलो, नमस्कार। मेरी किन से बात हो रही है?
1: नमस्कार मैडम। मैं रंगापारा सोनितपुर असम से अमल बसुमतारी बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी अमल जी, कैसे हैं आप?
1: आज तो बहुत अच्छा है, मौसम भी बहुत सुहाना सुहाना था। और आज मैंने बर्थडे पे गए थे, बर्थडे से आके अभी प्रोग्राम में फोन लगा है, फोन भी मिला है, बहुत अच्छा लगा है।
0: जी, और अमल जी आप करते क्या हैं?
1: मैं तो खेत के छत जोड़ते हो, जैसे कि धान का खेत लगाता है और हमारा घर पे चाय का बगान है।
0: जी, तो अमल जी, आज आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: बलमा फिल्म का गाना सुनना है मैम, तो अगर जिंदगी हो तो ये गाना को।
0: जी, और ये गीत आप अपने किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त है जिन लोगों का नाम लेना चाहूंगा। सबसे पहले बिमल बसुमतारी को सुनाना है, भाईकोन मुंडा को, रमेश पात्र को, और हमारे त्रिपुरा से संगीता देवनाथ, आशुतोष देवनाथ और अविनाश टेली, और मध्य प्रदेश से है रमेश प्रजापति, भगवान सिंह परमार, राकेश पूरन वर्मा, शिवा लोहार, और महाराष्ट्र से तानुश्रू को भी सुनाना चाहता हूँ।
0: जी, तो चलिए अमल जी, सुनाते हैं आपका आपका ये मनचाहा गीत।

0: हेलो म्यूजिक लवर्स
1: हेलो म्यूजिक नंबर, नमस्कार।
0: जी। नमस्कार, मेरी किन से बात हो रही है?
1: आपकी बात हो रही है राकेश से और मैं बात कर रहा हूँ इस समय शिमला से।
0: जी राकेश जी, कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया है, इस समय आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम से जुड़ के।
0: जी, तो राकेश जी, आज आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: तो गीत सुनेंगे, सबसे पहले तो मैं दोस्तों को याद करना चाहूंगा, तो मैं चलते चलते गीत भी बता दूंगा। तो सबसे पहले तो ये गाना आपको डेडिकेट रहेगा,
0: जी
1: तो स्कूल लाइन विजयपुरम से पूर्णिमा जी है और महाराष्ट्र से तनुश्री सुर्वे हैं और सत्यनी विष्णु कुंडू हैं और मोनिका जी हैं और धर्मवीर और भगवान सिंह परमार जी हैं और अमल हैं, विमल हैं और अविनाश तेली और पूर्ण वर्मा और तमाम सुनने वाले श्रोता सबके लिए गाना डेडिकेट रहेगा। और फिल्म का नाम है खुदार और गाने के बोले हैं वो आंखें ही क्या है तेरी सूरत नहीं जिसमें।
0: जी तो चलिए राकेश जी, सुनाते हैं आपको आपका ये मनचाहा गीत।

दोस्तों, अगले रविवार भी हमसे जुड़ने के लिए कॉल करें इन नंबरों पर 2325 40 और 2325 58, और हमारा STD कोड है 03192। तो दोस्तों, वादा करते हैं जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी इस दोस्त अनुप्रिया को। नमस्कार, शुभ रात्रि।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे है श्रोताओं, और अब समय है आपके भरपूर मनोरंजन का। श्रोताओं, अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम चित्रपट संगीत कार्यक्रम की। इस कार्यक्रम में सबसे पहला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं जागृति फिल्म से। आवाज आशा भोसले की है, गीत रचना प्रदीप ने की और संगीत दिया हेमंत कुमार ने।

अगली पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ताजमहल फिल्म का गीत, बोल लिखे है साहिर लुधियानवी ने और संगीत रोशन का है।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र और आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में तैयार शैलेंद्र की लिखी रचना। आवाज़ मुकेश की है और इस गीत को हमने लिया है अराउंड द वर्ल्ड फिल्म से।

श्रोताओं, आप सुनते हैं आज और कल फिल्म का गीत। स्वर मोहम्मद रफ़ी का है, गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार रवि।

इस समय आप सुन रहे हैं आनंद बख्शी की लिखी रचना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज किशोर कुमार की है और फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे।

अगली पेशकश मेरे सनम फिल्म से। स्वर दिया मोहम्मद रफ़ी ने, गीत रचना मजरू की है और संगीत ओपी नायर का।

श्रोताओं, अब सुनते हैं इस कार्यक्रम की अंतिम पेशकश किशोर कुमार की आवाज में लाल पत्थर फिल्म से। बोल लिखे हैं देव कोहली ने और संगीत शंकर जयकिशन का।

अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब सुनते हैं रोजगार समाचार।

से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों में MIS डाटा एनालिस्ट का एक पद, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के दो पद, अकाउंटेंट का एक पद तथा HMIS असिस्टेंट के छः पद शामिल है। चयनित अभ्यर्थियों को MIS डेटा एनालिस्ट पद के लिए 40,000 प्रतिमाह, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एवं अकाउंटेंट पद के लिए 30,000 प्रतिमाह तथा HMIS असिस्टेंट पद के लिए 20,000 प्रतिमाह का समेकित मानदेय प्रदान किया जाएगा। नियुक्ति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता प्रत्येक पद के अनुसार अलग अलग निर्धारित की गई है। MIS डेटा एनालिस्ट पद के लिए BE BTech या MCA या MBA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट अथवा समकक्ष योग्यता के साथ संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव आवश्यक है। MPH मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ अथवा समकक्ष योग्यता भी मान्य है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पद के लिए किसी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री संबंधित तकनीकी योग्यता तथा TIAA+ MCSA क्षेत्र का अनुभव अपेक्षित है। अकाउंटेंट पद के लिए MCOM डिग्री के साथ कंप्यूटर का ज्ञान या BCOM डिग्री के साथ लेखा एवं वित्त क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। HMIS असिस्टेंट पद के लिए BCA कंप्यूटर साइंस सूचना प्रौद्योगिकी अथवा समकक्ष विषय में स्नातक डिग्री तथा संबंधित अनुभव आवश्यक है। सभी पदों के लिए आयु सीमा 21 से 60 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन शैक्षणिक योग्यता अनुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि कल यानी 10 अगस्त 2026 है। साक्षात्कार संबंधी जानकारी अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही 22 जुलाई का द डेली टेलीग्राम भी देखा जा सकता है। ये थे रोजगार समाचार।

अंडमान एवं निकोबार केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मिशन तथा राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के अंतर्गत अनुबंध के आधार पर विभिन्न पदों के लिए योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों

एक आवश्यक सूचना। श्रोताओं, क्या आपके जिले में कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश में हर जिले की सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की है, अपने जिले के अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दें। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। ये थी सूचना। श्रोताओं, अब सुनते हैं चंद देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप देशभक्ति गीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाली है। अब से कुछ ही देर बाद समाचारों का प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: È Sir Firosì. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा, जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में 4थे स्थान पर था। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण किया।
2: To launch this campaign today on the August Gandhi Devas as we commemorate the Quit India movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
0: गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोगों ने इस यात्रा में तिरंगे के साथ भागीदारी की। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: झारखंड सरकार ने आंदोलनरत छात्रों की अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है।

0: के मंत्री सुदीव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद में मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए आईआईटी आईएसएम आईआईएम रांची और एक्सएलआरआई के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। छात्रों ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों को सीआईडी ने कल पूछताछ के लिए तलब किया है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही।
2: पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय निश्चित करना है।
3: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300

0: गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलट की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पवित्र कलश वंदन यात्रा आज कंबोपुरा गांव पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने संत श्री रविदास मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा गुरु रविदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में बैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है, जिससे जाजपुर और भद्रक जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से पानी भर गया है। जबकि बैतरणी की एक शाखा कानी नदी के कारण जाजपुर जिले में फिर से बाढ़ आ गई है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है और अनुमान लगाया है कि उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में कम दबाव वाले सिस्टम के कारण भारी बारिश होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और 3 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। उज़्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंडियन ने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा, आंदोलन जारी रहेगा। JPSC के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड I am निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with medal winners of Commonwealth Games 2026, urges citizens to all

0: प्रदर्शन देने वाली इस बाल कलाकार ने आंध्र प्रदेश के सरकार से प्रतिष्ठात्मक बाल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है। इन्होंने कर्नाटक गायन में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के CCRT के द्वारा वरिष्ठ छात्रवृत्ति प्राप्त किया। उसी वर्ष में आकाशवाणी के राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में शास्त्रीय भक्ति संगीत में प्रथम पुरस्कार और कर्नाटक शास्त्रीय गायन में द्वितीय पुरस्कार भी प्राप्त किया है। ये आकाशवाणी में पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी पीढ़ी की गायिका हैं। इन्होंने प्रख्यात सभाओं में, प्रतिष्ठात्मक संगीत उत्सवों में और भारत के अग्रगामी सांस्कृतिक संस्थानों में प्रदर्शन दिया है। इन्होंने कर्नाटक गायन में और वायलिन में डिप्लोमा के साथ साथ संगीत में MA डिग्री हासिल की है और IIT खड़गपुर में MBA डिग्री भी प्राप्त की है।
1: श्रीमती सात्विका मोहन is an A-grade artist of Akashvani and Doordarshan and an accomplished Carnatic classical vocalist and violinist. She received her initial training under Srimati V. Lalita, followed by advanced tutelage under Vidushi Srimati Vishnubhatla Krishnaveni of the renowned Vishnubhatla sisters, and further advanced guidance from Vidwan Sri D. Raghavachari of the illustrious Hyderabad brothers, a child prodigy who presented her maiden concert at the age of 6, she was conferred the prestigious Balaratna title by the government of Andhra Pradesh. She is a recipient of the senior scholarship in Carnatic vocal music awarded by the CCRT, Ministry of Culture, Government of India, and achieved national distinction by securing first prize in classical devotional music and second prize in Carnatic classical vocal music at the All India Radio National Music Competitions in the same year. Becoming a second generation Akashvani National Prize winner, she has performed extensively at eminent sabhas, prestigious music festivals and leading cultural institutions across India. She holds diploma in Carnatic vocal and violin, an MA in music and an MBA in human resource management from IIT Kharagpur.
0: Aaj raat ke is karyakram mein aapke saath sangat karne wale kalakar hain. वायलिन पर श्री ओ राजशेखर, मृदंगम पर विद्वान पीरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
1: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट श्रीमती सात्विका मोहन इज अकंपनीड ऑन वायलिन बाय श्री ओ राजशेखर, ऑन मृदंगम बाय विद्वान पीरवली जय भास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
0: श्रीमती सात्विका मोहन अपने गायन का आरंभ त्यागराज की एक कृति से कर रही हैं, जो राग हमसद ध्वनि तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्रीमती सात्विका मोहन बिगिन्स हर वोकल रिसेटल विद द कंपोजिशन ऑफ त्यागराज स्वामी इन द राग हमसद ध्वनि सेट टू आदि ताल।

0: अब आप सुनेंगे त्यागराज स्वामी की एक कृति जो राग आनंद भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू ए कंपोजिशन ऑफ त्यागराज स्वामी इन द राग आनंद भैरवी सेट टू आदिताल।

0: श्रीमती सात्विका मोहन अपना गायन जारी रखते हुए अब प्रस्तुत करेंगी नारायण तीर्थ द्वारा रचित एक तरंगम, जो राग बिलहरी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हर वोकल रिसाइटल, श्रीमती सात्विका मोहन विल नाउ प्रेजेंट ए नारायण तीर्थ तरंगम इन द राग बिलहरी सेट टू आदि ताल।

0: अब आप सुनेंगे मैसूर वासुदेवाचार्य की एक रचना जो राग सिम्हेंद्र मध्यमम तथा मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: यू नाउ लिसन टू ए कंपोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार इन द राग सिम्हेंद्र मध्यमम सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: कन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वाज द कन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाय विद्वान पीरवली जय भास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
0: श्रीमती सात्विका मोहन अपने गायन का समापन श्री कनक दास की एक कृति के साथ कर रही हैं, जो राग सिंध भैरवी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: श्रीमती सात्विका मोहन कंक्लूड्स हर वोकल रिसेटल विद द कंपोजिशन ऑफ श्री कनकदासा इन द राग सिंधु भैरवी सेट टू खंड चापू ताल।

0: इसी के साथ हम रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा में श्रीमती सात्विका मोहन का गायन समाप्त करते हैं। आज की सभा में उनके साथ वायलिन पर थे श्री ओ राजशेखर, मृदंगम पर विद्वान पेरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के प्रसारण कक्ष में इस संगीत कार्यक्रम का ध्वनियांकन किया गया है। ये कार्यक्रम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है।
1: With that, we conclude the vocal recital by Srimati Satvika Mohan in the broadcast of Ravivasriya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. She was accompanied on violin by Sri O. Rajshekar, on Mridangam by Vidwan Peravali Jayabhaskar and on Ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad. For Ravivasriya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha and brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 11 बजे हैं। अब सुनते हैं मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है, पर मछुआरों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समुद्री तटों पर हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहने तथा जिसके बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। इसलिए मछुआरों को चेतावनी दी जाती है कि वह समुद्र में आज से यानी 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक ना जाए। परसों तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। ये थी मौसम की जानकारी। इसके साथ ही हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के श्रावण माह की 19वीं तिथि तदनुसार 10 अगस्त सन 2026 इस समय सवेरे के 5:28 और 32 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।